विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे, जल थल और अंबर से फिर चहु ओर से भोले की जयकार उठे।

0: मानव प्रभु की सेवा से विमुख होकर अहंकार के आसरे कर्म करते हैं, परंतु वे कर्म उनकी आत्मा के लिए बंधन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म हमें करने चाहिए कि हम दूसरों के सदा काम आए, जिससे दूसरों का भला करके अपने जीवन को भी सही राह पर ला सकें, अपने कर्मों को सुधार सकें, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है और इसके आगे हमारा कोई भी बस नहीं चलता।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा।

प्रातःकालीन वंदना कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का भाग 78। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, जिसमें 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। सुप्रभात कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आज विशेष के साथ साथ जानकारी साझा करेंगे। कोयला खनिक दिवस के बारे में, पर्यटन स्थल बरोट की जानकारी आपके संग साझा करेंगे और पर्यावरण में बात होगी उपयोगी पक्षी कबूतर के बारे में। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी। सुबह 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुनवाया जाएगा, जिसमें 9:18 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के बाद 9:30 से 10:00 तक गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे। सुबह 10:00 फिल्म संगीत, 10:30 पर हिमाचली गीत आप सुन पाएंगे। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर सुनिएगा पंजाबी गीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनवाया जाएगा। दोपहर 12:30 पर घर परिवार कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा कोयला खनिक दिवस, धार्मिक यात्राएं करें सोच समझ कर। सामान्य ज्ञान में बात करेंगे मसालों से संबंधित और आज के मसाले में होगा हींग। खान पान में जानकारी साझा करेंगे भरवां टींडे बनाने की विधि के बारे में। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 1:10 से 3:00 तक रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 3:10 से 5:00 तक। 5:00 समाचार आप सुनेंगे, जिसमें 5:00 हिंदी में, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाए जाएंगे। 5:10 पर आनंद उठाइएगा भजनों का। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा फायर सेफ्टी की जागरूकता जरूरी, आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:06 पर सदाबहार संगीत पेश किया जाएगा। मौजा गरांदियां कार्यक्रम में 6:30 पर जानकारी का विषय रहेगा भेड़ बकरी पालन। 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम में 7:10 पर बात होगी फसल विविधीकरण और मृदा परीक्षण के बारे में। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत 8:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार और आज के संगीतकार हैं सलील चौधरी। 9:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीत। 10:00 पसंद आपकी गीत हमारे कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः 8:00 प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति, तथा वैद्युतिकी मतदान यंत्राणां गणना प्रातः 8:30 प्रारप्स्यते। असम राज्ये 26+ केरलम राज्ये 44+ तमिलनाडु राज्ये 34+ आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 30 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले 93+ आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य 21 भविष्यति, तत्रैव मतगणना च मईमासस्य 24 भविष्यति।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90+ किलोग्राम मिता मिशन दृष्टि नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मित बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रह अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुख सोपान रूपेण वर्णितवन्तौ। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् 45+1900 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, एषः नूतन विकासः नास्ति इति। विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः संदर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेश मंत्रालय द्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसार माध्यमानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45+1900 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षा त्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिक क्षमतायाः संगमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामंत्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मंच रूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं चतुस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फौलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से।
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाज़ों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाज़ों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका इन देशों के जहाज़ों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
4: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A three-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. And the commission has warned of strict action against any dereliction of duty during the process. Kollan Laha reporting from Kolkata.
3: Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across 38 districts. Our correspondent has filed this report.
5: Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true. As people are likely to gather around counting centres, state and paramilitary personnel have been posted outside the centres to strengthen security and divert traffic accordingly. The counting will begin with postal ballots and then the EVMs. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
6: Janadesh 2026.
7: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
6: Today, the 4th of May 2026.
7: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
6: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
7: Tune into Akashwani Gold along with additional frequencies.
6: From 8:30 a.m. onwards today.
7: Janadesh 2026.
3: Indian space startup GalaxEye has launched Mission Drishti, world's first Optosar satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California, United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night, chasing a target of 164 runs set by Punjab Kings. Gujarat Titans scored 167 for 6 with one ball to spare. Sai Sudarshan was the top scorer for Gujarat with 57 runs. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants in Mumbai at 7:30. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Odisha. And that is the end of this news bulletin.
8: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जानकारी और मनोरंजन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सुख और दुख, खुशी और गम एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और जीवन में इन पहलुओं से हम सबको रूबरू होना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता कि हमारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लेकिन हाँ, हर स्थिति में सकारात्मक

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब बात करते हैं इतिहास में आज विशेष की।

1989 में श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री आज ही के दिन बनी थी। 2007 में बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक संपन्न की गई। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडे का जन्म 1905 में आज ही के दिन हुआ। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल केसी रेड्डी का जन्म 1902 में आज ही के दिन हुआ। सन 1767 में प्रसिद्ध कवि और कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज का भी जन्म दिवस आज ही है। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान 1799 को दुनिया को अलविदा कह गए। विख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज सन 2008 में हमारे बीच नहीं रहे।

0: सुबह के 7:19 और 24 सेकंड हुए हैं। आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। आज विशेष की शेष जानकारियों में, सन 1896 को लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। सन 1924 को पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सन 1959 में पहला ग्रैमी अवार्ड आयोजित हुआ था। सन 1980 में कोल माइंस डे की घोषणा आज ही के दिन हुई थी। सन 1983 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था।
1: तत मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत राम तत राम तत।

तानिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन दादा किट झट झट झट झड़न नचिक सग सगन का किट झट।

श्रोताओं, सुप्रभात कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे कोयला खनिक दिवस के बारे में। आज 4 मई को समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिवस कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। कोयला खनिक उद्योग वर्षों से समस्त विश्व में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कोयला खनन का अधिक उपयोग 19वीं से 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। उद्योगों में कोयले से प्राप्त ऊर्जा को मिश्र धातु के निर्माण, परिवहन, विद्युत उत्पादन आदि में किया गया। 20वीं सदी तक कोयला खनन उद्योग ने वैश्विक रूप से एक बड़े उद्योग का रूप धारण कर लिया। उद्योग बढ़ने के साथ व्यापारी संघों और खनिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उस समय वो हो गए थे। तो श्रोताओं, कोयला खनिक दिवस की जानकारी आगे भी हम आपके संग साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत आपको सुनवाते हैं।

शुद्ध भारत में वाणिज्यिक रूप से कोयला खनन की शुरुआत 1774 में दामोदर नदी तट पर रानीगंज नामक स्थान से हुई। 1874 के बाद भाप से चलने वाले इंजन के चलन के कारण परिवहन क्षेत्र में कोयले की मांग बढ़ी और भारत में कोयला खनन में तेजी आई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोयले की मांग बढ़ी। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1973 में किया गया। विश्व में प्रमुख कोयला उत्पादकों में भारत पांचवें स्थान पर है। कोयला खनन एक अत्यंत खतरनाक पेशा है जिसमें दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी खतरों जैसे ब्लैक लंग रोग यानी फेफड़ों से संबंधित समस्याएं आदि होने की संभावना बनी रहती है।

श्रोताओ, अब हम बात करेंगे पर्यटन स्थल बरोड के बारे में। बरोड जो मूल रूप से 1920 के दशक में शानन जल विद्युत परियोजना के लिए विकसित किया गया था, हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में एक पर्यटन स्थल है। 1975 में सड़क खुलने तक बरोड तक पहुंचना मुश्किल था। ये जोगिंदर नगर से 40 किलोमीटर और जिला मुख्यालय मंडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरोड जाने वाली सड़क जोगिंदर नगर मंडी राजमार्ग से अलग होती है और जोगिंदर नगर से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है। कभी कभी जोगिंदर नगर से फ्यूनिकुलर ट्रॉली का उपयोग करना संभव होता है, जिससे दूरी घटकर 12 किलोमीटर तक हो जाती है। सड़क मार्ग से सीढ़ीदार खेत और घने देवदार के जंगल हैं, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित झंटीगढ़ी तक जाते हैं। मंडी के पूर्व शासकों के ग्रीष्मकालीन महल के अवशेष यहाँ स्थित हैं। टिक्कर नामक छोटे से गांव से होकर सड़क बरोड तक जाती है। इस कस्बे में कई तरह के आउटडोर गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। ट्राउट मछली पालन केंद्र भी यहां शामिल है, जहां से मछलियों को उल नदी में छोड़ा जाता है और नदी के 30 किलोमीटर के हिस्से का उपयोग मछली के पकड़ने के लिए किया जाता है। बरोड उल नदी के पार स्थित नरगु वन्यजीव अभयारण्य का प्रवेश द्वार भी है। यह अभयारण्य मोनाल, काले भालू और घोरल का घर है। इसके भीखा थलतुहोद और सिलंबधारी में वन विश्राम गृह हैं। देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर एक ट्रैकिंग मार्ग अभयारण्य को पार करता हुआ कुल्लू तक भी पहुंचता है।

श्रोता, कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं और यहां हम बात करेंगे पर्यावरण की। और आज बात होगी उपयोगी पक्षी कबूतर के बारे में। कबूतर एक शांत स्वभाव वाला पक्षी है। विभिन्न स्थानों के कबूतरों की आकृति थोड़ी अलग हो सकती है। कोलबिंडी कुल गण, कोलबिंडी फर्मी

के कई सौ प्रजातियों के पक्षियों में से एक छोटे आकार वाले पक्षियों को फाख्ता या कपोत और बड़े आकार को कबूतर कहते हैं। कबूतर ठंडे इलाकों और दूरदराज के द्वीपों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। भारत में 34 से अधिक किस्मों के कबूतर पाए जाते हैं। इसकी सामान्य प्रजातियों में नीला रॉक कबूतर, हरा शाही कबूतर, हिमालय का हिम कबूतर, तिब्बत के पठार का पहाड़ी कबूतर, पर्वतीय क्षेत्र के शाही और जंगली कबूतर, अंडमान का जंगली कबूतर, निकोबार का पाइड इंपीरियल कबूतर, पीतवर्णी कबूतर प्रमुख हैं। कबूतर का आहार अनाज, दालें, फल, कलियां, पत्तियां, घोंगे और कीट हैं। ये रेत, चिकनी मिट्टी, चूना, बजरी तक भी खा जाते हैं। गोबर के ढेर रासायनिक अवशेषों से नमक प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा ग्रहण किए गए छोटे छोटे कंकड़ पेट में भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये पानी में अपनी चोंच डुबाकर लगातार चूस कर पानी पीते हैं। कबूतर की आवाज़ निसंदेह गुटरगू, गुर्राहट, सिसकरी और सीटी की ध्वनि जैसी भी होती है। ये वृक्षों या भूमि पर निवास करते हैं और ज़्यादातर झुंडों में रहते हैं।

आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुपिया कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हिमाचली गीत और लोक संगीत इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भुवनेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

हिमाचली गीत और लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब लीजिए सुनिए ओम प्रकाश और साथियों को इस अगले लोकगीत में।

आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण। सूचना समाप्त हुई। सुप्रभात, शुभ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार आपको सुनवाए जाएंगे। 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
3: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
3: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल इसाई सौंदर राजन का है, जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
5: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र हैं। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरलम में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
6: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
6: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
6: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
6: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। हॉर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर

0: पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च, चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम पश्चिम केरलम तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू, 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata.

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आपने हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत सुना। गीत के लिए संगीत बप्पी लहरी का था। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए प्रतिज्ञा फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पहलों का इंतजार।

0: असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री पीयूष महाजन, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर, और इनसे भेंट कर रहे हैं अनुज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री पीयूष महाजन जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद सर
1: जी, आज का हमारा विषय है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को विधिक सेवाएं योजना 2015। पीयूष जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बनता है, असंगठित जो क्षेत्र हैं क्या होते हैं?
2: जैसे कि अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित सेक्टर जो है वह उस रोजगार व्यवस्था को कहते हैं जहां काम फॉर्मल सिस्टम के बाहर होता है, यानी जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वह प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं होता और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कानूनी लाभ अक्सर नहीं मिलते। इस सेक्टर में आमतौर पर देखा जाता है कि रिटर्न अपॉइंटमेंट्स लेटर नहीं होता, फिक्स सैलरी का कोई सिस्टम नहीं होता, प्रोविडेंट फंड्स नहीं होते, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते, मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेड लीव नहीं होती, वर्किंग आवर्स जो हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते, और जो लेबर लॉज हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर वीक होते हैं।
1: जी,
2: एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन जो लेबरर्स होते हैं, डोमेस्टिक जो हेल्पर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रिक्शा पुलर्स इत्यादि जो हैं, उन्हें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स कहते हैं।
1: जी पीयूष जी, असंगठित क्षेत्र है या इसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2: देखिए, भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर से चल रहा है। लगभग 93 से 94% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती है, और जो कि जीडीपी में 50% से ज़्यादा का अपना योगदान देती है। ये लोग जो सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, यही देश की इकोनॉमी का असली बेस है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी देखिए कि जो ये सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग हैं वही सबसे कम जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं।
1: पीयूष जी, इसमें जो कानूनी समस्याएं आती हैं वह इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस सेक्टर में वो है इनविजिबिलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें अपने लॉज और राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। ये वर्कर्स काम तो करते हैं लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड्स में नहीं आते। अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो जो इनके राइट्स हैं वो एनफोर्स नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि जैसे कि लो वेजेस इन्हें मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं। अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एम्प्लॉई है अगर उसकी सैलरी रुक जाए तो वो कोर्ट या अथॉरिटीज के पास जा सकता है, लेकिन जो ये डेली वेजर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्कर है, इन्हें पता नहीं होता कि अपने लीगल राइट्स कैसे इन्फोर्स करना है।
1: जी, जैसे बात करी आपने लेबर लॉज की, तो पहले से भी कुछ जो कानून है वो हैं, लेकिन जो ये योजना लाई गई तो क्या जो श्रमिक हैं उस कानून का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे या क्या उनकी वो रक्षा नहीं कर पाते?
2: देखिए, जहाँ तक लेबर लॉज की बात है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। प्रैक्टिकलिटी में जो ये लॉज हैं वे पूरी तरह से इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी अवेयरनेस नहीं होती है इन्हें, तो ये जो हैं ये अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इंडिया में अगर हम लेबर लॉज की बात करें तो काफ़ी लेबर लॉज हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, कंपनसेशन लॉज हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, मेटर्निटी बेनिफिट लॉज हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन की। इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। दूसरा ये है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। वेलफेयर बोर्ड जो हैं हालांकि एग्जिस्ट करते हैं लेकिन थोड़े इनएक्टिव हैं, और अवेयरनेस तो ऑलमोस्ट जीरो है। यानी कानून बना देना इनफ नहीं होता, कानून तब काम करता है जब वह वर्कर्स तक एक्चुअल में पहुंच सके,
1: उसकी जानकारी और जागरूकता उन तक पहुंचे।
2: जी बिल्कुल
1: जी। पीयूष जी, ये जो योजना है श्रमिकों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको सरल शब्दों में समझाया जाए तो क्या कह सकते हैं?
2: नालसा की ये जो स्कीम है इसका मकसद है मजदूर को कानून तक पहुंचाना और कानून को मजदूर तक लेके जाना। स्कीम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है वर्कर्स को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट दिलाना और अवेयरनेस बढ़ाना। ये जो स्कीम है ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दिलाना नहीं है, बल्कि ये एक जस्टिस डिलीवरी मॉडल है।
1: जी, आगे आपसे प्रश्न बनता है कि कौन कौन इसके जो हितग्राही होते हैं या लाभकारी हैं।
2: जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जितने भी आते हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लेबर्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स हैं और जो वुमेन वर्कर्स हैं इनफॉर्मल जॉब्स में, ये सब जो है वो इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं।
1: जी, जैसे कि पीयूष जी, कोई मजदूर है, सही मायने में इसका फायदा कैसे मिल सकता है उस व्यक्ति को?
2: अगर जैसे कि कोई वर्कर है उसको पैसा उसका जो है वो नहीं मिलता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है काम करते वक्त, या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या स्कीम का बेनिफिट डिनाय हुआ है, तो उसे जो है वो एक फ्री लीगल एडवाइस जो है वो इस स्कीम के अंदर है। कंप्लेंट ड्राफ्टिंग में उसकी हेल्प की जाती है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कोर्ट से कंपनसेशन दिलाई जा सकती है। इसके अलावा जो है उनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो भी पूरी तरह से इंश्योर की जाती है इस स्कीम के थ्रू।
1: और इसमें एक स्पेशल सेल होता है, वो क्या होता है और क्या उसकी महत्ता है?
2: देखिए, स्पेशल सेल्स जो हैं वो स्कीम का ग्राउंड मैकेनिज्म है। इन स्पेशल सेल्स में जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स, एनजीओस, पीएलवीज होते हैं। ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये कैंप्स लगाते हैं, डिफरेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होती है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई फॉर्म वगैरह उन्हें फिल करना होता है तो वो फॉर्म्स फिल करने में मदद करते हैं, और अगर कोई लीगल कंप्लेंट हो तो उनको प्रोसेस करने में भी हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वर्कर को शहर के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, वे सिस्टम खुद उनके पास आता है।
1: जी, उनकी
2: जी
1: मदद हो जाती है वहीं
2: जी
1: जिस स्तर पर वो काम कर रहे
2: जी
1: हैं।
2: बिल्कुल।
1: इसमें पैरालीगल वॉलेंटियर्स कौन होते हैं और क्या उनका उद्देश्य होता है योजना में?
2: पीएलवीज जो हैं वो इंटरमीडिएटरी हैं स्कीम में, कानून और जनता के बीच का एक ये ब्रिज है।
1: जी
2: ये जो होते हैं ये एक ट्रेन्ड वर्कर्स होते हैं, लोकल पर्सन्स होते हैं, जो वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं। अगर उनको कोई फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है तो उनकी उसमें मदद करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके कलेक्ट करने में मदद करते हैं,
1: हाँ
2: अथॉरिटीज तक वो उनको पहुंचाते हैं, उनको प्रॉपरली उनका क्या डिस्प्यूट है और क्या इसका हल हो सकता है वो बताते हैं। इसके अलावा ये जो पीएलवीज होते हैं ये काफ़ी ट्रेंड पर्सन होते हैं जो कि प्रॉपरली स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं।
1: जी, संवैधानिक दृष्टिकोण से यह जो स्कीम है या योजना है क्यों इतनी महत्वपूर्ण है पीयूष जी?
2: देखिए, इसकी जो महत्वता है वो बहुत ही गहरी महत्वता है। ये स्कीम हमारे संविधान के आर्टिकल 39A के स्पिरिट को रियलिटी में लाती है। जो हमारा आर्टिकल 39A है वह बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये जो उसी और जो है वो एक कदम बढ़ाता है। साथ ही ये डिग्निटी ऑफ लेबर और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है, यानी ये सिर्फ वेलफेयर स्कीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का एक मैकेनिज्म भी है।
1: जी, कई जगह देखिए पुरुष भी होते हैं और महिला श्रमिक भी काम कर रही होती हैं,
2: जी,
1: तो महिला श्रमिकों के लिए क्या कुछ खास है इसमें?
2: महिला वर्कर्स को हरासमेंट, नॉन पेमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, एक्सप्लॉयटेशन या वॉयलेंस के केसेस में फ्री लीगल एड मिल सकती है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स के केसेस हैं वो भी इस स्कीम में कवर किए गए हैं।
1: जी, अगर इस योजना का लाभ लेना है या क्रियान्वयन की बात करें तो वो किस प्रकार होता है?
2: अगर किसी को सैलरी या कोई और एक्सप्लॉयटेशन हुई है या कोई और समस्या है तो वह अपने नियरेस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो दफ्तर है वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ वो अपनी एप्लीकेशन एक दे सकते हैं, जैसे उसके साथ आधार कार्ड और आईडी प्रूफ के साथ वो दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसके बाद जो है इन्हें एक फ्री लीगल एड जो लॉयर है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो इनकी समस्याओं को हल कर सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जैसे 15100 है उस पर भी अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं।
1: जी पीयूष जी, जैसे इसमें कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है,
2: जी
1: वो
2: सर,
1: उनके हनन कर रहा है श्रमिकों के कानूनों का या जो उनको योजना में अधिकार दिए हैं, तो क्या वो सजा का पात्र भी बनता है?
2: जी, जैसे कि मोस्टली जो इनको रेगुलेट करता है वो लेबर लॉज हैं, क्योंकि जब कोर्ट में एक लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी तो जो डिफरेंट जो हमारे लेबर लॉज हैं अगर उसके अंदर वो दोषी पाया जाता है तो उस हिसाब से जो है पनिशमेंट दी जाएगी।
1: पीयूष जी, काम के दौरान अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है आकस्मिक कि वो भविष्य में उस तरह का काम नहीं कर सकता, तो क्या उसके अधिकार हैं?
2: बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगर वर्कर के साथ काम करते वक्त एक्सीडेंट होता है तो उसको कुछ खास कानूनी राइट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला हक है तुरंत इलाज। एम्प्लॉयर का फर्ज है कि अगर कोई कार्य क्षेत्र में कोई वर्कर जो है वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको तुरंत जो है वो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करे। सेकेंडली आता है कंपनसेशन का राइट, कि अगर एक्सीडेंट ड्यूटी के दौरान हुआ है और इंजरी सीरियस है, डिसेबिलिटी हुई है या डेथ हो गई है, तो वर्कर या उसके परिवार को कंपनसेशन मिलता है। तीसरा, सैलरी या वेज प्रोटेक्शन। कई सिचुएशंस में ट्रीटमेंट पीरियड या इंजरी के बाद जो है एप्लीकेबल लॉज के तहत वेज बेनिफिट या ड्यूज मिलते हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है सेफ वर्क प्लेस का राइट, कि हर वर्कर को हक है कि उसे जो टूल्स प्रोवाइड किए जाएं, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, सिक्योर वर्किंग कंडीशंस दी जाएं। अगर एम्प्लॉयर जो है वो नेग्लिजेंस करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस का बेनिफिट है, कि अगर वर्कर कोई इंजर्ड हो जाता है तो एम्प्लॉयर पे ये है कि वो स्टार्टिंग से ही उसकी इंश्योरेंस करवा के रखे, और जिससे उसको मेडिकल और कैश बेनिफिट्स दोनों मिल सकें। जी
1: पीयूष जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो श्रमिक हैं उनका मानदेय रोक लिया जाता है या मिलता नहीं है,
2: जी
1: तो इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है?
2: अगर जो वर्कर है उसका अगर मानदेय रोक लिया जाता है, वह सबसे पहले तो एक जो कंप्लेंट है वो लेबर इंस्पेक्टर के पास वो कंप्लेंट कर सकता है। अगर वहाँ से उसको प्रॉपर लीगल हेल्प चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल अथॉरिटी के पास जा सकता है, जहाँ पे वो अपना जो समस्या है वो बताएगा, तो DLSA की तरफ से उसे जो है वो एक लीगल एडवाइस के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर दिया जाएगा, जो उनका केस जो है वो अथॉरिटीज के पास प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा।
1: जी पीयूष जी, कई बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो प्रवासी श्रमिक बन जाते हैं वहां जाकर, क्या इनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है?
2: जी बिल्कुल, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनके लिए ये जो स्कीम है ये काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर किसी रिकॉर्ड में नहीं है, तो जो उनके लीगल बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिलते। माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, यूजली वो कोई डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करते। दूसरा जो है वो लैंग्वेज इशू होता है, ऐसे में अगर उन्हें अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके कोई लीगल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो जैसे कि स्कीम के अंडर वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो उन्हें, जैसे कि मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट देंगे, तो उससे ये हेल्प होगी कि उनकी जो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में जो है वो एक मदद मिलेगी, उनको बेनिफिट्स क्लेम करने में भी हेल्प होगी, एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस होंगे वो फाइल करने में भी उन्हें
1: आसानी होगी
2: आसानी होगी। इसके अलावा जो है जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेशन तो उनको मिलेगा ही,
1: जी।
2: तो उससे ये मदद हो जाएगी कि वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अननोटिस्ड नहीं रहेंगे, उनका भी जो एक भागीदारी है समाज में उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी।
1: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो अपने हक की बात कर सकते हैं। पीयूष जी, अब क्योंकि समय भी हो रहा है इस कार्यक्रम में, तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: मेरा यही संदेश है कि मजदूर अपने अधिकारों को समझें, डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं और परेशान हैं तो लीगल अथॉरिटी से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप जो है आपको प्रॉपर कानूनी सहायता मिल सके।
1: जी, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है और कानून जो है सभी वर्गों क्षेत्रों में एक प्रकार से लागू होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आकाशवाणी हमीरपुर को जो आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, और हमारा और आपका ये साथ बना रहेगा ठीक 10 बजे तक।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में राम लखन फिल्म का ये गीत सुना। मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाजें इस गीत में थी। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और अलका याग्निक को लीजिए सुनिए बाजीगर फिल्म में। धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

डर फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप ने सुना। शिव हरि का संगीत इस गीत में था। अंगरक्षक फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें इस गीत में हैं।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 9:18 होने को है, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए दाखिल। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी। जनगणना 2027 के लिए सिरमौर जिला में पहले चरण की जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम खराब। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का किया अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से पहले 3 बजे के बीच होगा। शहरी निकाय चुनावों के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चार राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। जनगणना 2027 के लिए जनगणना को 2 चरणों में किया जा रहा है। फिलहाल पहले चरण की जनगणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जनगणना में कार्य करने जा रहे कर्मचारियों को 99 विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। जनगणना के मद्देनजर

0: जिला में 30 फील्ड ट्रेनर नियुक्त की गई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: जनगणना 2027 को लेकर सिरमौर जिला में सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा। जिला में जनगणना के लिए नियुक्त किए गए फील्ड ट्रेनर्स के लिए नाहन में विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन्हें मुख्य रूप से तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर मास्टर्स ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सही जानकारी साझा करने की अपील करते हुए कहा कि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से मैं सतीश शर्मा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट 26 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिणाम सहित अंतिम उत्तर कुंजी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाधान समारोह शीर्ष लोक अदालत 2026 का आयोजन 21 अप्रैल से आरंभ किया गया है। इस अभियान का समापन 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में शीर्ष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति व सुलह के माध्यम से निपटारा करना है। इसके तहत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा, जो 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया है, ताकि संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान संभव हो सके। सुलह बैठकों में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकते हैं। अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने हेतु एक सरल गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर इच्छुक पक्ष अपने मामलों को इस अभियान में सम्मिलित कर सकते हैं। फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे भरने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @EIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला के ऐतिहासिक चौगान में दो दिनों तक चले आईपीएल फैन पार्क का कल रात गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए क्रिकेट मुकाबले के साथ ही समापन हो गया। वहीं दोपहर के समय भी दर्शकों ने सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव देखने का आनंद लिया। यहां पहुंचे हजारों क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा अनुभव दिया गया। दर्शकों ने यहां स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए फूड स्टॉल में स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया। इसके अलावा युवाओं और बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव मनोज शर्मा ने आयोजकों का चंबा जैसे दूरदराज जिला में इस तरह के आयोजन को संपन्न करवाने के लिए किए गए सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि 50 शहरों में इस तरह के फैन पार्क स्थापित किए गए थे। चंबा में भी इस आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। प्रदेश में बीते दो दिनों से बारिश के साथ अंधर चलने से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज भी भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 और 7 मई को येलो अलर्ट जारी किया है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सहयोग से आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने खराब मौसम से हुए नुकसान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, अंधड़ के साथ भारी बारिश, छतें उड़ी, पेड़ उखड़े, कई जिलों में ब्लैकआउट, चोटियों पर हिमपात। दिव्य हिमाचल के शब्द है, बेमौसमी बरसात, आंधी से फल फसल बर्बाद। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, 9 मई तक मौसम खराब। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, रद्द 15 बिजली परियोजनाओं को दोबारा अलॉट करेगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, आपातकालीन सेवाओं में हिमाचल पुलिस देश में नंबर 1, रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट 36 सेकंड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर बस हादसे पर दैनिक जागरण लिखता है, चालक को हृदयाघात, बस पलटने से 28 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए दाखिल। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी। मतगणना 2027 के लिए सिरमौर जिला में पहले चरण की जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम खराब। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का किया अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में खलनायक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अलका याग्निक की आवाज इस गीत में आपने सुनी। करण अर्जुन फिल्म का गाना अब आपके रेडियो सेट्स पर है। लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गीत है, संगीत राजेश रोशन का।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: आपके दिल की डोर।
1: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
2: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
0: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
2: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
0: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हरिहरन को अब लीजिए सुनिए। नायक फिल्म में ए आर रहमान ने धुन तैयार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एकता के संग। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म कच्चे धागे से। इस गीत को गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे बोलों को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म आदमी खिलौना है से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। गीतकार हैं समीर।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू से ये गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

अभी ये गीत सुना आपने कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म आरजू से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी अनु मलिक ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए अब आपको आखिर में सुनवा रहे हैं फिल्म क्या कहना से ये गीत, और इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और शब्द दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं धीरज शर्मा का गाया हुआ

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं मान सिंह की आवाज में, माफ कीजिए सुनील राणा का गाया अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अजीत सिंह और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हिमाचली गीत और लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं विशाल पठानिया की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं, अब वक्त है
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। शहरी निकाय चुनावों के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चार राज्य असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा जबकि तमिलनाडु में TVK और केरलम में UDF आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और ये परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। जनगणना 2027 के लिए जनगणना को 2 चरणों में किया जा रहा है। फिलहाल पहले चरण की जनगणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। जनगणना में कार्य करने जा रहे कर्मचारियों को 99 शेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। जनगणना के मद्देनजर जिले में 30 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: जनगणना 2027 को लेकर सिरमौर जिला में सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा। जिला में जनगणना के लिए नियुक्त किए गए फील्ड ट्रेनर्स के लिए नाहन में विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन्हें मुख्य रूप से तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर मास्टर्स ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सही जानकारी साझा करने की अपील करते हुए कहा कि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से मैं सतीश शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। प्रदेश में बीते 2 दिनों से बारिश के साथ अंधड़ चलने से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी से कई सड़कें अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जबकि 6 और 7 मई को येलो अलर्ट जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन 21 अप्रैल से आरंभ किया गया है। इस अभियान का समापन 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति व सुलह के माध्यम से निपटारा करना है। इसके तहत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा, जो 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया है, ताकि संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान संभव हो सके। सुलह बैठकों में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से शामिल शामिल हो सकते हैं। अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने हेतु एक सरल गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर इच्छुक पक्ष अपने मामलों को इस अभियान में सम्मिलित कर सकते हैं। फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे भरने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
0: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए आनंद लीजिए पंजाबी गीतों का कार्यक्रम में पहला पंजाबी गीत शामिल कर रहे हैं गुरदास मान का गाया हुआ।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पंजाबी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए बबूमान का गाया ये पंजाबी गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम का आखिरी पंजाबी गीत आपको सुनवा रहे हैं, एमी विर्क का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत FM बैंड 103.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूं अजीत, नमस्कार। जी हां श्रोताओं, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
3: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
3: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंदसौलिया और श्रीमती कल्पना चंदसौलिया लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
2: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
3: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
2: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल

0: बिपिन रावत को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
0: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराम भी कहते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है।
0: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
0: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
1: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
1: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
0: सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.
4: It is a rose.
3: Good. Now try another thing. What do I hold?
4: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
3: Smart girl.

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझना आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे, तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पास लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे, कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
0: Thank you. तो वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो।
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है।
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता।
2: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों मुझको सीख सिखाती है? नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
2: क्या मतलब?
1: ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
0: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का

घोंसला ही तोड़ दिया। तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों

शंकर महादेवन, सोनाली राठौड़ की मिली जुली आवाज़ों में अभी आपने बॉर्डर फिल्म से ये देशभक्ति गीत सुना। इस गीत के लिए संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कस्मे वादे फिल्म का ये गीत। आर डी वर्मन ने धुन तैयार की है, आशा भोंसले, किशोर कुमार, अमित कुमार ने इस गीत को गाया है।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रेम कहानी फिल्म का गाना श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं और सैनिक साथियों, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सखियों का कार्यक्रम घर परिवार।

कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी एकता का नमस्कार। सखियों, इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम नई नई जानकारियाँ और नए पुराने गीत, और साथ ही मिलकर बनाते हैं चटपटे से व्यंजन। तो आज के कार्यक्रम के पिटारे में भी है बहुत कुछ, तो फटाफट से जुड़िए हमसे अपने इस कार्यक्रम में। सखियों, आज कोयला खनिक दिवस है। आप तो जानती ही हैं कि हमारे देश भारत में कोयला उत्पादक कंपनियों में लाखों लोग जो हैं काम करते हैं। ये दिन उन मेहनती खनिकों को हम समर्पित करते हैं। वे लोग धरती के अंदर कठिन परिस्थितियों में काम करके देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में भूमिका जो है निभाते हैं। सखियों, इनका काम बेहद जोखिम भरा होता है। इन्हें धूल, गर्मी, अंधेरे और कभी कभी गैस के खतरे के बीच भी काम करना पड़ता है। कोयला खनिक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। सखियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि खनिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और समाज को उनके त्याग और भूमिका की जानकारी देना। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी दैनिक सुविधाओं के पीछे खनिकों की कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा है। हमें उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए, साथ ही उनकी सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए प्रयास जो हैं हमें करते रहना चाहिए। सखियों, जानकारी के साथ साथ अब मनोरंजन के सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम घर परिवार सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पशुधन फार्म परिसर से मिली जानकारी के अनुसार जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मई 2026 यानी वीरवार को सुबह 11 बजे पशुधन फार्म परिसर डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की पशुधन फार्म परिसर में गाभिन बछड़ियों को खुली बोली के माध्यम से बेचा जाएगा। सभी इच्छुक किसानों और पशुपालकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया में भाग लेकर मौके का फायदा उठाएं। नीलाम किए जाने वाली गायों में है जर्सी क्रॉस और साहिवाल। सूचना समाप्त हुई।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में स्वागत है। सखियों, आज हम कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और उस पे हम आपसे बात करेंगे। जी हाँ, ये विषय कहीं ना कहीं सखियों हमसे जुड़ा हुआ है कि कैसे हम सखियाँ जब धार्मिक यात्रा करें तो कैसे हमें सोचना समझना है। अक्सर हम लोग जब भी अपने अपनों या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो अधिकतर धार्मिक स्थलों की ही यात्रा पर हम जाते हैं। सखियों, धार्मिक यात्राएं केवल आस्था का विषय नहीं होती, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी, अनुशासन और समझदारी की भी परीक्षा लेती हैं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में भी धार्मिक यात्राएं जो है हमें सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यात्रा की उचित योजना हमें बनानी है कि हमें कब, कहाँ और कैसे सखियों जाना है, साथ ही कितने दिनों का कार्यक्रम हमें बनाना है और मौसम और भीड़ का ध्यान जो है हमें रखना है। जी हाँ सखियों, है तो गर्मी का मौसम पर कभी भी बारिश तूफान जो है आ रहा है, तो जब भी आप यात्रा का कार्यक्रम बनाएं तो ये सब भी ध्यान रखें। जी हाँ, हमें सही वक्त का भी चयन करना है। सखियों, जो प्रमुख हमारे तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर छुट्टियों के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सब लोगों को छुट्टियाँ होती हैं तो अधिकतर लोग तीर्थ स्थलों की यात्रा पर ही निकलते हैं। और गर्मी के इस मौसम में हम दर्शन के लिए अधिक देर तक जो है भीड़ में खड़े भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे भी गए होते हैं। तो इन जगहों पर सखियों दुर्घटनाओं का जो खतरा है बना रहता है। हम चाहे जहाँ भी यात्रा करने जा रहे हों, हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की जाँच करवानी है और यात्रा करते वक्त अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ रखनी हैं। जी हाँ, अगर यात्रा के दौरान कोई बीमार हो जाए तो हम उसे प्राथमिक उपचार वक्त पर उपलब्ध करवा सकते हैं। सखियों, हम जिस भी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं उसके रास्ते, उस मंदिर के बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए। हम वहाँ जाने से पहले वहाँ के रास्तों, ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा का जो है निरीक्षण जो है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना या पहचान वाला पहले वहाँ गया है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, अगर पहले वहाँ जाने या ठहरने की जानकारी होगी तो वहाँ पहुँचकर हमें जो है सखी असुविधा ना होगी। सखी, धार्मिक स्थलों पर अगर हम जा रहे हैं तो हम अपनी रहने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन यात्रा की बुकिंग करते हैं तो आपके लिए होटल वाले परिवहन की सुविधा और खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। इससे आपको वहाँ पहुँचकर परेशानी नहीं होती। पर हमें किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले अपना एक बजट बनाना है, ताकि सखियों यात्रा के दौरान हम जो है आर्थिक परेशानी से ना गुजरें। हमें अपने बजट के अनुरूप ही अपने लिए किसी धर्मशाला या होटल में कमरा जो है बुक करवाना है। सखियों, धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वहां के स्थानीय नियमों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है, और साथ ही साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम वहां अनुशासन को भी बनाए रखें। अंधविश्वासों और अफवाहों से हमें बचना है। वहाँ पहुँचकर बहुत से जो बहुरूपी होते हैं उनसे भी अपना सतर्कता से बचाव करना है। जी हाँ सखियों, बहुत बार लोग हमारी धार्मिक आस्था का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं वे दान पेटी में ही डालें। जी हाँ, हम धार्मिक स्थलों में अक्सर देखते हैं कि लोग जो है गलत तरीके से प्रभु दर्शन के लिए आगे आते हैं, या फिर खड़े हुए श्रद्धालुओं को धक्का देकर आगे पहुँचते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सखियों, धार्मिक यात्रा का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा को पाना है। तो हमें जब भी धार्मिक यात्रा पर जाना है तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। यदि हम पूरी योजना, सावधानी और जागरूकता के साथ यात्रा करेंगे तो ये अनुभव और भी सुखद और सुरक्षित बन सकता है। तो अगर आप भी कहीं जाने का प्रोग्राम बना रही हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। और कार्यक्रम में फिर से वक्त है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत के बाद फिर से सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में स्वागत है। सखियों, आप तो जानती हैं कि इस कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन अलग अलग तरह की जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, तो आज हम मसालों से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं और आज हम जानेंगे हींग के गुणों के बारे में। हींग से तो वैसे सारी सखियाँ परिचित हैं क्योंकि हमारी भारतीय रसोई का ये एक महत्वपूर्ण मसाला होने के साथ साथ सखियों आयुर्वेद में भी औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फिरोला नामक पौधे के गोंद से प्राप्त होती है। सखियों, इसका पौधा जो है 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है और इसकी जड़ें गाजर के आकार की और गुदेदार होती हैं। हमारे देश में हींग कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। हींग अपनी तीखी गंध और प्रभावशाली गुणों के लिए जाना जाता है। सखियों, हींग को पाचन का सबसे अच्छा साथी माना गया है। जैसे ये गैस, अपच, हमारा जब पेट फूलता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी मददगार है। खाना बनाते वक्त तभी तो हम सखियां दाल सब्जी में हींग का छोंक लगाती हैं। हींग में पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक गुण छोटे छोटे घाव या त्वचा संक्रमण को भी ठीक करने में मदद करते हैं। सखियों, हींग एक साधारण मसाला होते हुए भी कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यदि इसका संतुलित और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये पाचन, श्वसन और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। तो अगर आप भी अपने खाने में हींग का इस्तेमाल करती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं करती हैं तो आज से ही खाना बनाते वक्त खाने में हींग का तड़का जो है ज़रूर लगाएं। सखियों, सामान्य घरेलू जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में वक्त है खान पान का और आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे। टिंडे की सब्जी सखियों, हमारे बच्चे क्या हम बड़े भी खाना पसंद नहीं करते, पर यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से भरवा टिंडे बनाएंगी तो बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सखियों, टिंडे बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 से 7 मध्यम आकार के टिंडे, 2 बारीक कटे प्याज, 2 बारीक कटे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच, 1 हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच लेंगे, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वादानुसार ले सकती हैं और नमक भी आप अपने स्वादानुसार ले सकती हैं, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और तेल 2 से 3 बड़े चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सखियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने टिंडे लिए हैं उनको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लें, फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। अब चाकू या पीलर की सहायता से इनका पतला छिलका हमें उतार लेना है। अब टिंडों को ऊपर से हल्का सा कट लगाकर अंदर थोड़ा सा गूदा निकाल लें, पर हमें कट ऐसा लगाना है कि जब हम मसाला भरें तो वो अंदर जो कट लगा है वो अच्छे से बंद हो जाए ताकि मसाला बाहर ना निकले। सखियो, अब बारी है मसाला तैयार करने की। जी हाँ, जो मसाला हमने टिंडे में भरना है वो तैयार करने की। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालकर गैस ऑन करके गरम करेंगे, उसमें प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक प्याज को भूनेंगे। जब प्याज हल्का सुनहरा होने लगा, जैसे कि हमारा हो गया है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छे से भूनेंगे। अब बारी है बारीक कटे हुए हरे जो लाल टमाटर हैं वो डालकर इसे तब तक भूनने की जब तक ये तेल ना छोड़ दें। अब डालेंगे इसमें धनिया, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और अच्छे से कड़छे से मिलाते हुए तब तक मसाला भूनना है जब तक ये मसाला अच्छे से पक ना जाए, तेल ना छोड़ दें। अब हमारा मसाले ने तेल छोड़ दिया तो हम गैस बंद कर देंगे, हम इस मसाले को ठंडा होने देंगे। सखियों, हमने पहले से मसाला जो ठंडा रखा हुआ था तो हम इस मसाले को एक एक टिंडे में अच्छे से भर देंगे और ऊपर से बंद कर देंगे। एक अन्य छोटे तले वाले पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म होने देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इन टिंडों को सावधानी से इस पैन में सीधा रखकर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में ढक्कन उठाकर जो है टिंडे पलटते रहें ताकि सभी तरफ से अच्छे से पक जाएं। सखियों, तो हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और बारीक कटे हरे धनिए से इन टिंडों को सजाकर रोटी, परांठे या दाल चावल के साथ परोसेंगे। तो आप भी बनाइए आज के खाने में ये भरवा टिंडे और हम इनका आनंद लेते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ अब अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया विपिन कुमार और सुनील कुमार ने। इसी के साथ प्यारी बहनों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट DMK ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने NDA के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है। क्या कहना है आपका?
2: जी, आप सही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहां पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट की बात करें जहां पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
1: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
2: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग MLA है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
1: राकेश जी, ये बताइए,
2: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई, वो मार्जिनली भी आगे हैं जो, बट इट इज इन फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
1: धन्यवाद राकेश
2: जी।
1: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर आप बताना चाहें श्रोताओं, तो आप जरूर बताएं कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती हैं और एक बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की जो घास है वो कौन सी घास है। हीर रांझा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कैफी आजमी का लिखा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आम की डाली याद रखने की चीज़ है। श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं सुरीले सफ़र पर जाने की, तो बस वादियाँ हों या फिर जो गांव की वादियाँ हैं वो हों या फिर पहाड़ों की वादियाँ हों, इसमें बहुत ही जो एक अलग सा एहसास है वो होता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसी जगहों पे जब आप सेल्फी लेते हैं तो उन्हें किस तरह से संजोह कर आपने रखा हुआ है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और वैसे हर मौसम अपने आप में कोई ना कोई नजराना हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है, और तभी तो इसे कहते हैं कि ये प्यार का मौसम है। मौसम चाहे कोई भी हो श्रोताओं, लेकिन चेहरे पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि हंसी खिला जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र आज पहाड़ियों के पर्यटन क्षेत्र से हो सकता है कुछ बातें मिलें इसमें। तो कुछ साल पहले हम नैनीताल गए थे, वहाँ की हसीन वादियाँ, नौका विहार आज भी हमें याद है। ऐसे ही कुछ पर्यटन के स्थान जहाँ आज का ये सुरीला सफ़र पूरा करने का ऐसे ही वक्त कभी कभी जो है वो मिलता है, और कभी कभी ज़िंदगी के साथ निभाने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मौसम मधुवंती बसंत बहार के गीत सुनता हूँ, कुहू कुहू बोले कोयलिया ये गीत इन्होंने याद किया है। वैसे जो हमने अभी आपको गीत सुनवाया ही रांझा फिल्म का, ये गीत भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे ये लिखते हैं कि ऋतु बसंत की प्रथम कली खुलती है, प्रेम अपनी प्रतिमा के लिए जो है गजरे लाता है, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो मैं लगा दूँ। गाँव में दिन भर गर्मी रहती है, लेकिन रात को फूल और

पत्ते, पेड़, ठंडी हवाएं, तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और हमारे श्रोता ने पसंद किया है जो गीत, जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है वो है हुस्न पहाड़ों का। शायद ये गीत आज ज़रूर शामिल होगा। वैसे इस जो लाइन है यानी जो हमारी इबारत है, इसमें हमने दिल की बात भी की है श्रोताओं, जो वादियों में अक्सर रह जाता है। हम तो चले आते हैं लेकिन हमारा दिल जो है अक्सर उन्हीं वादियों में घूमता रहता है, सोचता रहता है उन्हीं वादियों के बारे में। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये वादियाँ और भी सुकून भरी हो जाएं, तो फिर कह नहीं क्या। और ऐसे में अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है।

श्रोताओ, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह को चुनिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी?

डार्क फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिलो तो प्यार से, फिल्म हीर रांझा का गीत इन्होंने जो है वो उस गीत के बारे में अंदाज़ लगाया है, और लिखते हैं कि बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया, और प्रिया राजवंश और राजकुमार नज़र आते हैं, यानी पूरी जो एक डिटेल है वो इन्होंने लिखी है, और कुछ और गीतों को इन्होंने अनुमान लगाया है। आपकी कसम फिल्म का गीत जिसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ है, और एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजराना या नजराना भेजा है किसी ने प्यार का, इन हसी वादियों से हुस्न पहाड़ों का, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, और रूठे रब को मनाना आसान, कोयल क्यों गाए। जी हाँ, तो कुछ कुछ जो गीत हैं वो तो मिल ही रहे हैं श्रोताओं, और आपने बहुत सही, बहुत ठीक अनुमान लगाया है कि ठीक है, बहुत सारे गीत का अगर मिलान ना हो पाए तो भी शब्दों को आप बिल्कुल सही परख रहे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक हमारे और श्रोता देश परदेश के गीत को जो है वो सोच रहे हैं, और लैला मजनू फिल्म का गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार ये इन्होंने सोचा है और लिखा है इस बारे में। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रूठे हो सनम तो फिर क्या है, रूठे सैयां हमारे सैयां क्यों रूठे, न रूठो रूठो, और तुमने किसी से प्यार किया, और भी कुछ एक रूठने से इन्होंने गीत बताए हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पर छोटी सी कविता याद आई है इनको कि जिंदगी प्यार का एक नजराना है, हर मिलन में छुपा अफसाना है, वादियों में दिल को जो सुकून मिले वो मौसम भी जैसे दीवाना है, कोयल की तान में मीठी सी बात, बसंत बहार का रंग सुहाना, फूलों में लिखी हर एक मुस्कान, यादों का प्यारा खजाना, चलो इन पलों को सजा लें हम, हर लम्हा अपना तराना है।

जी हाँ, मौसम आजकल कुछ ऐसे ही करवटें ले रहा है। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने रेडियो के बारे में पूछा है। 1968 में घर में फर्नीचर कैबिनेट की बात इन्होंने कही कि वाला रेडियो दादाजी लाए थे जिसमें बैटरी लगती थी जो एक माह चलती थी। उस पर विविध भारती, सिलोन, आकाशवाणी, इंदौर के कार्यक्रम हम सभी सुना करते थे। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत था मिलो न तुम तो हम घबराएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर की मीठी मीठी याद है जब शादी या फंक्शन में घर के दरवाजे पर वो बक्सा नुमा भोपू जाता था, उसमें काले तवे के समान जिस पर बैठा स्वान जो मिस्टर वॉयस कहलाया, पीतल की घड़ी नुमा बक्से में लगी रहती थी, उसे घुमाया जाता था तब ये प्लेयर घूमता था। बाद में तकनीक के विकास में वो रिकॉर्ड प्लेयर खूबसूरत बक्से में रेडियो के साथ आ गया, रेडियोग्राम, और घर की शोभा बढ़ाने लगा। मेरे घर में सबसे पहला रिकॉर्ड आया था मदर इंडिया मुगल आजम, और इसमें नई फिल्म आई थी किस्मत, शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा। फिर कुछ दिन के बाद लॉन्ग प्लेयर आया शोले का, और पाकीज़ा का शोले वाला में डायलॉग सहित रिकॉर्ड आते थे। एक दशक के बाद फिर कैसेट का ज़माना आ गया। जी हाँ, रिकॉर्ड्स की जब आपने बात की है श्रोताओं, तो ये अलग अलग स्पीड के हुआ करते थे, और इनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एक ही गीत के होते थे, और कुछ में 6-7 गीत भी हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी गीत के बारे में करवटें बदलते रहे, ये गीत इन्होंने जो है वो समझा था कि हो सकता है आज बजे। एक और श्रोता ने लिखा है कि पिछले बार धर्मपत्नी के जन्मदिन पर मैंने चांदी की पाजेब और चांदी की बिछुड़िया का नजराना दिया था, और कभी कभी ये गीत मैं गाता हूँ धर्मपत्नी के लिए, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तोरा बदन चूमे। तो ये गीत भी है, जी हाँ श्रोता, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और आपने पसंद भी किया है, बहुत ही सुंदर नगमा। और देखते हैं वैसे आज क्या गीत बजता है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने ये पूछा था आपसे कि आपको अगर किसी एक जगह को चुनना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो शिमला पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी के मौसम का भी अलग ही अंदाज़ होता है, कहीं हम सैर सपाटे के लिए निकले तो तरह तरह के फूल नज़र आते हैं। आजकल अमलतास के फूल, गुलमोहर के फूल और साल वृक्ष के छोटे छोटे सफ़ेद पुष्प वातावरण को मनमोहक बना रहे हैं, और जनजाति वर्ग के लोग इस समय वनों पर एकत्र करने में लगे हुए हैं जो इनकी आमदनी का अच्छा स्रोत होता है। वैसे आपके लिए एक बार फिर हम ये इबारत पढ़ देते हैं श्रोताओं, जो आज हमने फेसबुक पेज पर दी है। ज़िंदगी प्यार का नजराना है, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, इन पलों को यादगार बना लें, चलें उन्हीं वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। वैसे आजकल पहाड़ों की सैर और यहां करवटें लेता मौसम सैलानियों के लिए किसी मीना बाज़ार की तरह सज चुका है। कहीं मधुवंती और कहीं बसंत बहार की तान लिए आम की डाली पर कोयल गीत सुनाती है, जैसे किसी रूठे हुए को मनाती है और पाजीब का नजराना देती है। तो बात इतनी सी है कि ये मौसम भी फूलों से लिखी प्रेम की किसी इबारत की तरह ही होते हैं जो हर पल मुस्कुराते हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी एक सफ़र, जी हाँ बिल्कुल सुहाना है, और प्यार हुआ इकरार हुआ ये बातें होती हैं, दीवाना लेके आया है नजराना, ये गीत इन्होंने सोचा और लिखा भी है। ये फिजाएं बुलाने लगती हैं, ऐसे में पहाड़ों का हुस्न उभर कर आता है, अम्बुआ की डाली पर कोयल बोलने लगती है, पतझड़ के बाद बसंत बहार छा जाती है, रेशमी पाजेब की झनकार सुनते सुनते सारी रात वो करवटें बदलते रहते हैं, और फिर रूठे रूठे पिया को कैसे मनाऊं इस सोच में फूलों की रंग से दिल की कलम से संदेश लिख देते हैं। जी हाँ, जो मौसम पर सीधा असर करते हैं।

श्रोताओ, वैसे आजकल आपने कोयल की जो मीठी मीठी सी तान है खूब सुनी होगी। इसके साथ ही एक और पक्षी है जो आजकल खूब बोल रहा है और खूब सुनाई दे रहा है। क्या इस पक्षी को आप पहचानते हैं?

0: गोल सा मुखड़ा
1: श्रोताओ, जरा ये तो बताइए कि आप मीना बाजार से क्या समझते हैं, क्योंकि आज ये शब्द भी हमारी इबारत में है, क्योंकि लोग छुट्टियों का मौसम है और ऐसे में जो सर्द वादियाँ हैं, जो पहाड़ी वादियाँ हैं, या फिर अपने गांव की सैर पर निकल चुके हैं और बातें करें अगर कुछ ख़ास अंचलों की, तो वहाँ मीना बाज़ार सजते हैं। मीना बाज़ार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। क्या ये मीना बाज़ार आज भी लगते हैं, इस बारे में हमें बताइए। आप सुन रहे थे ये गीत आप आए बाहर आई, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1964 में से रेडियो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बना, जो इस ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक नहीं भूल पाए, और उसमें सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन विविध भारती सुरीली धड़कन है। जी हाँ, विविध भारती तो सुरीली धड़कन है ही, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ये सुबह में कार्यक्रम जागो सुबह हो गई उठती है मेरे साथ, और छाया गीत कार्यक्रम के समापन के बाद सोती भी है मेरे साथ, जिससे मैं हर दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जब गीत सुनते थे तो कैसेटों के समय मैंने सीरीज़ की 320 कैसेट रिकॉर्ड से पुराने सदाबहार गीत भरवाए थे, बाद में 8 सीडी में डाउनलोड करवाए, फिर अब मेरे पास पेन ड्राइव में सेफ है सारे गीत इस रिकॉर्ड से, यहाँ तक कि गीतों का जो सुरीला सफ़र है वो तय किया है। एक और श्रोता ने करवटें बदलते रहे इस गीत की बात करी है, और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी इस जादुई और रूहानी इबारत ने फिजाओं में जैसे एक अलग सी मिठास घोल दी है। कोयल की कूक और वादियों में सुकून को समेटते हुए मधुवंती और बसंत बहार जैसे शास्त्रीय रागों का जिक्र, साथ ही मीना बाजार जैसी चमकदार दुनिया का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाज रचते हैं जो दिल को छू जाता है। आज इन शब्दों से गीत हो सकते हैं, जिंदगी, प्यार, नजराना, वादियाँ और तमाम शब्द जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्यार का नजराना, वादियाँ, सैर, मीना बाजार, बसंत बहार, रूठना, मौसम, फूल, कोयल की कूक, पाजीब आदि शब्द होंगे। ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके। वैसे आजकल ये बात भी है श्रोताओं कि देखिए कहीं कोई रूठे ना।

शोभा गुटू की आवाज़ में ये ठुमरी दादरा आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप आए तो जुड़ना हो रहा है आज। इबारत को पढ़कर आज दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आज किन शब्दों से सजे हुए गीत होंगे। आज का सुरीला सफ़र इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिंदगी नजराना मिलो बना चलें वादियाँ आजकल मौसम करवटें बाजार कोयल सज गीत किसी रूठे पाजेब की बात इतनी अंत में और प्रेम प्यार मुस्कुराहट के साथ समापन होगा। जी हाँ होगा तो और भी मौसम की भी बातें होंगी क्योंकि हाँ कोई भी मौसम हो श्रोताओ थोड़ा कष्टदायक तो होता है। जैसे बारिश के मौसम की ही बात करें या सर्दी के मौसम की ही बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ है। हमें चाहे ये मौसम अच्छे लगें या न लगें शरीर को सुकून दें या न दें लेकिन इस मौसम के बारे में कभी कोयल से जाकर पूछिए इसके साथ ही जो पपीहे की पुकार है उससे पूछिए तो ये मौसम उनको कैसा लगता है। बड़ा सुहावना लगता है कोयल को और किसानों से पूछिए जो हमारे लिए मीठे मीठे आम बहुत सारे कह सकते हैं कि जैसे ढेर सी लगा देते हैं। और ये मौसम तमाम खूबसूरत फलों का भी होता है फूलों का भी होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी पहाड़ों पर जाओ तो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है वादियाँ। वादियों में अजब सा सम्मोहन है जो हमें खींचता है धुंधली सी वादियों में खो जाने का मन करता है। वादियों में जाओ तो न जाने कितने गीत जाने कितनी कविताएं मन में बजने लगती हैं। पहाड़ों को कभी गौर से देखा है प्रकृति के सारे रंग वहीं आकर सिमट गए हैं। जब गर्मी के दिन परवान पर होते तो मौसम की पाजेब ध्यान से सुनिए इसमें छुपे कलरव और कुदरत के रंग जो होते हैं वो समाये होते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस इबारत में शामिल शब्दों में प्यार नजराना जिंदगी मिलो चलें सुकून दिल जैसे अनेक संज्ञा सरनाम विशेषण परक ही नहीं अभी तो क्रिया परक शब्दों के साथ ही संबोधन भी है और इस दृष्टिकोण से संभावित गीतों के चयन में ही पूरा दिन क्या और भी अधिक समय लग सकता है। फिर भी जितना समय है देखते हैं कितने लिख पाते हैं। और इसके आगे भी इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में भी लिखा है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी हाँ वैसे भी आप देखें श्रोताओं अगर अपने वाक्यों को भी देखें तो जीवन में बहुत सारे वाक्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति कई बार कई कई बार होती है।

श्रोताओं, हमने आपसे मीना बाजार के बारे में पूछा था, आज भी लगते हैं क्या ये मीना बाजार कहीं कहीं पर, और आपने क्या चीजें यहाँ से खरीदी हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। और आपके हालिया सफर के बारे में हमने पूछा था आपसे, यानी कि हाल में अगर आपने कोई सफर किया है तो।

अभिनेत्री रंजिता पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। हमने आपसे पूछा था मीना बाजार के बारे में श्रोताओं। जी हाँ, मीना बाजार तो आज भी लगते हैं। वैसे जो मीना बाजार की एक परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, जो मुगल काल में ही शुरू हुई थी। और यहाँ अगर आप दिल्ली में देखें तो ये बाजार अभी भी लगता है। हस्तशिल्प, अगर कपड़े आप अच्छे अच्छे जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं उन्हें अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। और भी जो देश की हाथ से बनाई चीज़ें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी मिलती हैं। और अगर बात करें आगरा की तो आगरा में भी मीना बाज़ार लगते हैं, और यहाँ पर मिडनाइट बाज़ार भी लगते हैं। रात में भी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं। तो मीना बाज़ार की अपनी रौनक है। आजकल वैसे छुट्टियों का समय है तो खूब ये बाज़ार सजे हुए हैं। मौसम कोई भी हो श्रोताओं, प्यार का मौसम होता है। हर मौसम आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप ज़रूर ले आता है, और प्यार इसका सबसे बड़ा उपहार है जो अलग अलग शक्लों में होता है।

श्रोताओ, आप चाहें तो इस गीत के कलाकार बता दें और संगीतकार बता दें। वैसे आवाज है मन्ना डे और आशा भोसले की, फिल्म है शायद।

सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत करने के लिए, आपके बातों के लिए, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: लगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी दोनों।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीज़ों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हों या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज़ जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नज़र हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना प्यार के द्वारे प्यार की सारी बातें इस प्यारी दुनिया में सबसे प्यारा अपना प्यार।

0: छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने। जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफ़र आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आजकल जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरे तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगा। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के

0: असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉक्टर रणुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम, उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर अब हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी अब इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी TVK ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की TVK पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे DMK या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
1: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी TVK की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ DMK पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में NDA की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में 1-1 सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बोरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थी हेमंत कुमार की। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। तीन देवियां इस फिल्म का गीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल।
1: अरे यार मेरी

0: जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मखदूम मोहिंद्दीन की रचना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म है चा चा चा।

चाचा चा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार स्वाइक चर्चा रिले की जाएगी।

0: समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा।
1: नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल, आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल, और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम 92.02% रहा। इस वर्ष कुल 81,417 परीक्षार्थियों में से 74,637 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि 3,071 की कंपार्टमेंट आई है। कांगड़ा जिला के भवारना स्थित पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंशित कुमार ने 99.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह कांगड़ा के एक निजी स्कूल की छात्रा शायला कश्यप और सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पच्छाद की आरुषि ने संयुक्त रूप से 99% अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। धर्मशाला के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़ी की छात्रा श्यामा वरजात्या ने 98.8% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा घोषित 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनके निरंतर परिश्रम और पढ़ाई के प्रति समर्पण का परिणाम है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है, जो राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों व प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। रोहित ठाकुर ने छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष एक बार फिर छात्राओं ने परीक्षा में छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशेषकर सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों की सफलता का ये संकेत देती है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। चार राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा, जबकि तमिलनाडु में टीवीके और केरलम में यूडीएफ आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बीच चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को सरल, सुलभ व आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अप्रैल से समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया गया है। इस अभियान का समापन 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के आयोजन से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत के बदलते कार्यबल को सशक्त बनाती महिलाएं। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: भारत में कुछ वक्त पहले तक महिलाओं के ज्यादातर काम अनदेखे ही रहते थे। उनके कामों का अधिकतर हिस्सा घरों, पारिवारिक उद्यमों और अनौपचारिक भूमिकाओं तक ही सीमित था, जिनका आधिकारिक दस्तावेजों में शायद ही कभी जिक्र दिखा। उनका योगदान तो निरंतर था, लेकिन उन्हें मिलने वाली मान्यता सीमित थी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और देश के श्रम परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं। भारत के कार्यबल की कहानी उन महिलाओं द्वारा परिभाषित की जा रही है जो न केवल ज्यादा तादाद में श्रम बल में प्रवेश कर रही हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों, प्रणालियों और उभरते अवसरों में भागीदारी के रूप को भी दोबारा परिभाषित कर रही हैं। ये बदलाव आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2025 में 40% हो गई है। इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है ग्रामीण भारत, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाएं काम से किस प्रकार जुड़ती हैं। महिलाएं आज न केवल कभी कभार योगदान देने वाली के रूप में, बल्कि निरंतर आर्थिक भागीदार के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। गांवों और छोटे कस्बों में महिलाएं अभूतपूर्व पैमाने पर पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। वित्तीय समावेशन के मार्ग के रूप में शुरू हुआ ये प्रयास धीरे धीरे सूक्ष्म उद्यमों के एक नेटवर्क में तब्दील हो गया है, जहां महिलाएं उत्पादन, प्रबंधन और बिक्री कर रही हैं और अक्सर अपने परिवारों में प्राथमिक आय का स्रोत बन रही हैं। महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए नए सिरे से शुरू किए गए नीतिगत प्रयासों से इस रफ्तार में और तेजी आई है। लखपति दीदी कार्यक्रम जैसी पहल स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को अपनी आय को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली करोड़ों महिला उद्यमियों का सृजन करना है। ऋण, कौशल और बाजार संपर्कों तक विस्तारित पहुंच के साथ ये भागीदारी से आय सुरक्षा की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जहां महिलाएं न केवल काम कर रही हैं, बल्कि अधिक मजबूत आजीविका का निर्माण भी कर रही हैं। उद्यमिता में ये बदलाव भारत की बढ़ती स्टार्टअप व्यवस्था में भी दिखाई देता है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है, जहां 2.2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स 23.3 लाख से अधिक रोजगार सृजित कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो नवाचार संचालित क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है। बेहतर वित्त पोषण, इनक्यूबेशन सहायता और अधिक अनुकूल नीतिगत वातावरण के साथ महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिका में कदम रख रही हैं, जो भारत की नई अर्थव्यवस्था में भागीदारी से उद्यमिता की ओर एक बदलाव का संकेत है। इसके साथ ही कौशल तक आसान पहुंच भी नए रास्ते खोल रही है। स्किल इंडिया मिशन और अन्य सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों की मदद से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों से जुड़े कौशल से लैस किया जा रहा है। उद्योगों पर आधारित कौशल विकास पर यह बढ़ता जोर रोजगार क्षमता में सुधार करने और अधिक स्थिर व उत्पादक आजीविका की ओर बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है। हालांकि भागीदारी केवल अवसरों तक पहुंच के बारे में ही नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा के बारे में भी है। हालिया श्रम सुधारों ने इस अंतर को दूर करने का प्रयास किया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित करने के नियामक ढांचा सरल हो गया है, साथ ही संरक्षण का दायरा भी बढ़ा है। न्यूनतम मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अब कार्यबल के एक व्यापक वर्ग को कवर करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं।
2: सामयिक चर्चा में आज विषय था बदलते कार्यबल को सशक्त बनाती महिलाएं। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी
4: हम आकाशवाणी धर्मशाला से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:10 हुए हैं, लीजिए अब आनंद लीजिए आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का। बिल्कुल, और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रख नहीं दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है, इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।
5: बिल्कुल, और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं। और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
4: बिल्कुल, और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का है इसका खनन करते हैं।
5: हाँ।
4: और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
5: बिल्कुल
4: बिल्कुल,
5: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी, और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है, तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है, और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
5: बिल्कुल,
4: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी बढ़ाता है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
4: जी, और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहाँ आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग।
4: जी,
5: है ना,
4: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ तो दीपा, बहुत ही सुंदर गीत था ये,
1: जी
0: और काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं और
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात

0: एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
1: श्रोताओं ने
0: श्रोताओं
1: लिखी
0: ने
1: है।
0: लिख
1: एक
0: के
1: श्रोता
0: भेजे।
1: ये भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज है खनिक दिवस।
0: खनिक दिवस,
1: हाँ
0: कोल कोल माइनस डे
1: दे
0: इसको
1: बिल्कुल।
0: अंग्रेजी में कहते हैं, और
1: कोयला खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
0: हिंदी में
1: हैं।
0: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
1: दुनिया
0: गहराइयों
1: में
0: में।
1: भाई
0: और देखिए ना,
1: हाँ
0: बात एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। है
1: हर
0: ना,
1: जगह है ये जुमला,
0: है ना।
1: हर परिस्थिति मारे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि
0: और
1: दुनिया
0: कई
1: के डर
0: सारे,
1: से। हाँ
0: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं उस
1: हाँ
0: वक्त।
1: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है
0: जी
1: दीन
0: जी
1: दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी, बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना,
0: सही
1: और
0: बात
1: कहने के
0: है।
1: बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली तब भी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझ कर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
1: जो बरसों
0: जो
1: से
0: बरसों
1: हमारे यहाँ
0: से
1: ढर्रा चल रहा है।
0: चलता
1: अरे
0: आ रहा
1: उसमें
0: है।
1: कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
0: सही
1: आप
0: बात है।
1: ये देखिए ना उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
0: सही बात
1: घर
0: है।
1: वाले भी कई बार हालांकि दीन दुनिया के डर से वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
0: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की
1: दिल की
0: माने।
1: माने।
0: तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। वैसे हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहाँ आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख ले करके
1: बिल्कुल
0: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
1: काम कर
0: और
1: सकते
0: काम
1: हैं।
0: कर सकते हैं।
1: हाँ मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
0: जी
1: ना,
0: जी
1: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया, आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने
0: जी
1: पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं,
0: जी
1: है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हट करो, आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
0: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
1: जा रहे
0: देश के घूमने घूमने के लिए निकले थे। कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है और
1: बेटा पैदल चल रहा है,
0: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
1: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में गाना है ना, दुनिया का ले लो मजा दुनिया तुम्हारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी हो गए हैं, हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती, उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की चिंता ही नहीं है।
0: ये बात कहीं ऐसा नहीं कि छोटे शहर, सब जगह है,
1: सब जगह है, ये हर जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए है ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल, और वहीं एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर हैं कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले,
0: चलिए।
2: अरे चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते
2: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गए।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले इतनी दूर, भेजोगे तो कैसे क्या होगा, पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते सारे हैं।
1: और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन
1: लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसके दिल की सुनिए, अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही तो आप अपने बच्चे का या
0: विश्वास
1: पर विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है, वो कैमरा लेके जाती हैं, घूमती हैं, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
1: और ये बात जहां पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
0: हाँ, अभी वक्त है एक अंतराल का।
1: जी,

0: इस अंतराल के बाद अभी सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहाँ पर दो बच्चियाँ होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियाँ होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत तो दिक्कत आती है उनको माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं जो आप पर नजर है, उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया की, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन,
0: डिसीजन लेना वो बहुत जरूरी, वही कहा ना विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकती है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहां दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दिए थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
5: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
4: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए। पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।
3: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
4: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है।
6: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी, कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण

0: हाँ केवल पद चिन्ह।
1: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
0: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती, नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
1: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
0: हाँ नहीं नहीं जरा भी भूख नहीं है। सुनो ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
0: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
0: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी, सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। हाँ ऐसा ही करती हूँ।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया,
0: कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
0: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे, कुछ अनिष्ट हो सकता है।

0: ऐसा करती हूं, पत्र लिखती हूं।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
0: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा, उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा।
0: माझी, उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए, नाव न जाई?
0: हाँ, रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई है?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए, कौनो सवारी शिकारी न मिली?
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।

कविता सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियाँ तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती
0: है। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी।
0: हाँ, वही तो
1: है ना। तो ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते। मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर।
2: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लें। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
0: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग, दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
2: बिल्कुल। यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
0: बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
2: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार की सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ के एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुँच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत, और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुँच गए, जहाँ होटल की थाली 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई। अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में

0: दो तीन बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंद लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि एक कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी बनाते होती है ना, उस तरह अच्छा, से उसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उसमें भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो अच्छा, बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
1: निकाल लीजिए।
0: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीज़ों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए एक लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चौखा रखिए। चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
1: ये आपका अपना स्वाद है।
0: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहें वैसे इसको
1: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
0: बिल्कुल, चलिए, पक्की बात।
1: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत,
0: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
2: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

पिटारा। पिटारा में आज सेहत ना।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है, पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझे लीवर में समझे छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करता है। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज़ गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है।
1: जी।
2: जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लिवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद इतना विस्तृत विषय है तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है।
1: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
2: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
1: पीली
2: या फीकी दिखाई देती है। जैसे फीकी जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है।
1: जी।
2: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
1: नाम
2: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीजेज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर की प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं,
1: गमोरिया
2: उसको ही मलेरिया बोलते हैं। तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती।

0: ये
1: जी
0: विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है, आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा, वो भी
1: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं
0: दाग
1: सफेद
0: भी आते हैं
1: सफेद।
0: चमड़ी पे।
1: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात
0: या
1: करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते
0: दाग
1: हैं लोग
0: दिखा,
1: उसे सफेद दाग जैसा समझने
0: बिल्कुल
1: लगते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: हाँ
1: और उसका इलाज शुरू करते हैं, तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
0: देखिए
1: हैं?
0: क्या है, सफ़ेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा जाता है, हालांकि हर सफ़ेद दाग कुछ ख़राब नहीं होता और कोई भी सफ़ेद दाग ख़राब नहीं होता। इनफैक्ट सफ़ेद दाग की तीन चार वजह है, एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये तीन मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफ़ेद चमड़ी आती थी, और तभी के ज़माने में पहले, मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था। ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे
1: जी
0: और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
1: हाँ, ईश्वर का क्रोध
0: क्रोध
1: समझकर
0: समझकर,
1: उसको
0: तो
1: थोड़ा सा
0: उस चीज़ से ये सफ़ेद दाग सभी उसी नज़रिए से देखने लगे लोग अभी,
1: जी,
0: वेदर इट इज़ विटिलिगो जो सफ़ेद दाग की बीमारी है।
1: ये
0: क्या
1: विटिलिगो को थोड़ा सा
0: हाँ,
1: समझाएंगे आप?
0: विटिलिगो
1: सफेद दाग ही
0: सफ़ेद
1: कहते
0: दाग
1: हैं
0: ही बोलते हैं जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, उसमें तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है, बस जैसे हमारे सफ़ेद बाल हुए वैसे ही सफ़ेद चमड़ी हुई। इतनी सिंपल बीमारी है वो
1: बस।
0: विटिलिगो, लेकिन लोगों के नज़र में वो इतनी ख़राब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में।
1: हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से
0: यस
1: लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद
0: यस
1: रहते हैं, बच्चे भी
0: वो
1: होते हैं, वो
0: हाँ,
1: विटिलिगो
0: वो
1: है
0: नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म अलग है वो,
1: जी।
0: उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज़ है। पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, तो वो
1: जी
0: एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनके मतलब पुतली भी वाइट है, बाल भी वाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफ़ेद दाग की बीमारी जो
1: जी
0: कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल
1: जी
0: लैंग्वेज में
1: जी
0: कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है। लेप्रेसी अलग चीज़ है, कोड अलग चीज़ है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफ़ेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं,
1: जी
0: सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया वो सफ़ेद बाल जैसी चीज़ है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिखने में वो सफ़ेद दिखता है, और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफ़ेद दाग की बीमारी है जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुँचा सकता है।
1: किस तरह का नुकसान होता
0: ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लीवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझिए स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म हो जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते, जैसे आपने देखा
1: हाँ,
0: होगा
1: नहीं
0: कुछ
1: ठीक
0: रोग के
1: है,
0: जैसे हाथ वगैरह
1: गलने
0: रिजॉर्प्शन
1: लगते हैं।
0: गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
1: मवाद और ये
0: हाँ
1: सारी
0: टिपिकल
1: चीजें होती
0: लियोनाइन
1: हैं।
0: फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है, ये लेप्रसी के जो
1: ये
0: जंतु
1: अब
0: है।
1: लेप्रेसी का इलाज कहाँ तक
0: लेप्रसी का
1: संभव?
0: इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। तो ये
1: जी,
0: जो लेप्रसी की जो डिसीज़ है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो
1: इन
0: अन्यथा है
1: लोगों की
0: वो
1: गलत
0: उसके वजह
1: धारणाएं
0: से,
1: हैं
0: हाँ उसके वजह से ये सफ़ेद दाग
1: को
0: का
1: भी गलत
0: को भी
1: नजरों से
0: गलत
1: देखते
0: नज़रों
1: हैं
0: से देखा
1: लोग।
0: जाता है, और सफ़ेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफ़ेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी
1: लेकिन
0: चल
1: जो
0: जाएगा,
1: फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता
0: हंड्रेड
1: है, लेकिन
0: हंड्रेड
1: सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रॉब्लम नहीं है।
0: लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नज़रिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज़ नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफ़ेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफ़ेद दाग को लेप्रसी के नज़रिए से देख रहे हैं, अभी जो सफ़ेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो वही चीज़ में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफ़ेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पोअर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
1: तो सर नजर
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफ़ेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है, अभी
1: मन से ये
0: लेप्रोसी तो नहीं,
1: गलत
0: हाँ
1: धारणाएं
0: गलत
1: निकलनी
0: धारणा
1: जरूरी
0: निकलनी चाहिए।
1: हैं।
0: कोई भी सफ़ेद तक मेरे ख्याल से अभी लेप्रेसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए और जिस चीज़ का इलाज नहीं होता उससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो से कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफ़ेद दाग जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोढ़ ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं। कोई म्यूजिकल तरीका भी होता है?
0: म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना ही है, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: कौन सा?
0: दिलवाले फिल्म का गेरुआ सुना दीजिए।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे, जब मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था, सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा। यस,
0: अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए, आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो। अब डॉक्टर साहब, बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है, हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ व पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रॉन्ग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज़ की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्माटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में हैं जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीस है, हालांकि हर्पीस तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीस भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है,
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूँ, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स, तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस, या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरूनी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हमने ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो, सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइज की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चलिए ये डूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई के,
1: हेयर डाई एलर्जीज,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायामाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायामाइन की एलर्जी होती है
0: जी।
1: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
0: भले उसका आंखों से कॉन्टेक्ट
1: ना हो, तो उसके आंखें सूज जाना, आंखें के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना, हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस, बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यू एलर्जी है तो पेशेंट दो तीन बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
0: जी।
1: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
0: और ये जो माथे का काला होना
1: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज़ का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
0: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
1: वो ठीक कर सकते हैं, मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए, ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
0: जी।
1: हाँ, बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का, अंदरूनी। अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है। तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: हेयर डाई के में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन आई फील, सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी? तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल आते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर माने जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की वोट निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विद अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुए चीज है, तो उसको जरा खुश
0: होने की बात हम और भी करेंगे। फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
1: इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी,
0: लव यू जिंदगी।

0: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो।
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत हो जिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे। सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल, ये फिटनेस नहीं होती है
0: जी।
1: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो अगर टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
0: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा। त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
1: त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज़ नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज़ रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट। तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाते हुए 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है, ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीज़ों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा, और रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए। उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए। बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए।
0: और नीचे कालापन आ जाता है,
1: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं। और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें अपने आप को।
0: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है
1: या
0: उसके लिए फिर वो क्या कर सकता?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप। एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है। तो धूप में जो काम करता है उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
0: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
1: यस,
0: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
1: नहीं, आप किस तरह से ये क्या हो रहा है। नहीं, कैंसर शब्द सुनते ही वो जो एक डर पैदा हो जाता है, जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर्स। जैसे अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है, जहां पे हुई है वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट, जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है वो। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
0: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
1: वो डैमेज, फिर अंदर गया तो लिवर में, सब जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे, एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
0: ओके,
1: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर है ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप 1 टाइप 2, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ, सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन अवर स्किन।
0: विदेशों में
1: उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है, वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है, उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं आराम से कपड़े वपड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है, और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
0: चलिए, इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक सुरीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
1: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए।
0: गलना गुड़िया।
1: हाँ हाँ
0: बच्चे। तो चलिए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लो हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है।
1: सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर
0: अफेक्ट। तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं।
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता है जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूँ।
0: कितने समय तक असर में रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारे शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: अलग अलग जो त्योहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कॉन्टेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवे में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके आस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
0: वो क्योर हो जाता है?
1: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
0: जी।
1: अपने

0: आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है, जख्म जैसी बात है ये।
1: वेल्डिंग कर रहा है बंदा, उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं।
0: वेल्डिंग का तो क्या है ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
1: और जब बात हमने होली की है
0: तो आज तो
1: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि
0: आज नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी यू नो द स्किन इज मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे, आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे हैं बाइक वगैरह जाते हो एक अच्छे से जैकेट या
0: चेहरे पे भी कुछ
1: उसकी ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है जो धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए या कुछ मास्क डाल लीजिए।
0: तो डॉक्टर साहब आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अभी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
1: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर की क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
0: दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से ज़रूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना सुन लें, समय तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं।
1: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

0: तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मजे से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब, आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीज़ें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंधल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की ओर है और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 15 साल से सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 293 के रुझान मिल गए हैं। भाजपा 192 सीटों पर आगे है और 6 सीट पर जीत कर निर्णायक बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट जीत ली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीत ली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य दलों को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 126 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों ने 70 सीटें जीती हैं और 30 पर आगे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों को 2 सीटें मिली हैं, 20 पर वो आगे हैं। अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट सीट पर हरा दिया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मुख्यालय में हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा मौजूद हैं। अनुपम, पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है, पार्टी मुख्यालय में कैसा माहौल है?
2: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में आनंद और उत्साह का माहौल है और जहां पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग लगाकर और सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहां उत्साह का माहौल है। और प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहाँ, प्रधानमंत्री जी का यहाँ 6:30 बजे पहुंचने का अनुमान है और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रीगण और भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे।
1: धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। टीवीके ने 234 सीटों में से 108 पर आगे है और 7 सीट जीत ली हैं। डीएमके और सहयोगी दलों को 7 सीटें मिली हैं, 64 पर आगे है। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 3 सीट जीत चुके हैं और 51 पर आगे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा IUML सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को करारी शिकस्त देने की ओर अग्रसर है। 140 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और 23 सीटों पर आगे है। कांग्रेस के सहयोगी IUML ने 9 सीटें जीती हैं और वो 13 सीटों पर आगे है। सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक 20 सीटें जीती हैं, 6 सीटों पर आगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं केरल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर आगे है। भाजपा ने 1 सीट जीती है, 2 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदम ने 11,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की सभी 30 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीत ली हैं, 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। AINRC ने 9 सीटें जीत ली हैं, 2 पर उसकी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, डीएमके ने 1 सीट हासिल की है और 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में 1-1 सीट जीत ली है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में 1-1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1 सीट जीती है जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्रतियोगिता में बने रहने की नज़र से महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों कार्यक्रम युवा मंच में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं गौरव राय। युवा साथियों आज का विषय है हमारा फायर सेफ्टी में जागरूकता और आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका। युवा साथियों विश्व अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है यानी कि आज के दिन। ये दिन उन साहसी अग्नि शामकों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान और संपत्ति को आग जैसी भयानक आपदाओं से बचाते हैं। समाज में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। युवा साथियों आग एक ऐसी आपदा है जो कुछ ही क्षणों में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। घर, स्कूल, उद्योग या जंगल, कहीं भी आग लग सकती है और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अग्निशमक बिना डरे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाते हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। उनका साहस, समर्पण और सेवा भावना हमें प्रेरित करती है। विश्व अग्निशमन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में आग से सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और अग्निशामकों के योगदान को सम्मान देना भी है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाती है। युवा साथियों फायर सेफ्टी के लिए हमें कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनानी चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर और बिजली के उपकरणों का सही उपयोग करना, घर और ऑफिस में फायर अलार्म लगाना, ज्वलनशील वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखना और आग लगने की स्थिति में तुरंत फायर ब्रिगेड 101 को सूचित करना। बच्चों को भी आग से संबंधित खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। युवा साथियों कार्यक्रम में हम इस विषय पर और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये गीत।
1: लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, परेड थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में आपका एक बार फिर स्वागत है। युवा साथियों, फायर सेफ्टी का अर्थ केवल आग बुझाना ही नहीं, बल्कि आग लगने से पहले उसकी रोकथाम करना, आग लगने पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना और उसके बाद नुकसान को कम करना भी है। इसके लिए कुछ ज़रूरी उपाय अपनाने चाहिए, जैसे घरों और आपके आसपास जितना भी है उसमें फायर जो अग्निशामक यंत्र होता है वो रखना चाहिए, और सही उपयोग करके गैस सिलेंडर और बिजली के उपकरणों को नियमित जाँच करते रहना चाहिए। बच्चों को माचिस और लाइटर से दूर रखना, और आपातकालीन नंबरों की जानकारी जो हम आपको बता ही चुके हैं उसे अपने पास रखना। इसके अलावा स्कूलों और संस्थानों में नियमित रूप से फायर ड्रिल कराई जानी चाहिए, ताकि आपदा के समय लोग घबराए नहीं और सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकें। युवा साथी और भी बातचीत करेंगे इस विषय पर, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। युवा ऊर्जा, साहस और नई सोच से भरपूर होते हैं। वे समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। आज के डिजिटल युग में युवा सोशल मीडिया, पोस्टर, रैली और अभियान के जरिए लोगों को फायर सेफ्टी के नियमों के बारे में भी शिक्षित कर सकते हैं। युवा साथियों, आपदा के समय युवा स्वयंसेवक के रूप में राहत और बचाव कार्यों की सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने और प्रशासनिक एजेंसियों की मदद करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा यदि युवाओं को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाए तो वे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं।

0: just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC apply.
0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: युवा साथियों, युवाओं को चाहिए कि वे समय भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें। वे स्कूल, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग फायर सेफ्टी के महत्व को समझ सकते हैं। युवा साथियों, अंत में ये कहा जा सकता है कि फायर सेफ्टी में जागरूकता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी मिलकर एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और सतर्कता बरते तो हम बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सही जानकारी, समय पर कार्रवाई और युवाओं का सहयोग, यही एक सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।
7: सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार संगीत। 6:30 पर किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान माफ़ कीजिए मौजा ग्राएं दियां कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 8 बजे समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनाया जाएगा। 9:15 पर कार्यक्रम में एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों लोकगीतों का कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे News@9। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा।
1: नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल, आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम 92.02% रहा। इस वर्ष कुल 81,417 परीक्षार्थियों में से 74,637 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि 3,071 की कंपार्टमेंट आई है। कांगड़ा जिला के भवारना स्थित पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंशित कुमार ने 99.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह कांगड़ा के एक निजी स्कूल की छात्रा शायला कश्यप और सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पच्छाद की आरुषि ने संयुक्त रूप से 99% अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। धर्मशाला के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़ी की छात्रा श्याम्या वरजात्या ने 98.8% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके और केरलम में यूडीएफ आगे चल रही है। इस बीच चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा ने तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत सुशासन, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता का विश्वास और भाजपा की विचारधारा की विजय है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा की शानदार विजय पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ते जन विश्वास, राष्ट्रवादी सोच और भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। सिरमौर जिला के संगढ़ा उपमंडल में प्यू ललाणी भलोना सड़क पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान भलोना स्कूल की मुख्य शिक्षिका अमरा देवी और उनकी 14 वर्षीय बेटी आराध्य, ऊंचा टिक्कर की 14 वर्षीय प्रियंका और कजवा के 62 वर्षीय सज्जन सिंह के रूप में हुई है। चालक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत जारी की गई है। जनगणना 2027 के लिए चंबा जिला में नियुक्त 32 फील्ड प्रशिक्षकों को तकनीकी व व्यवहारिक पहलुओं पर जानकारी व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए आज चंबा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:08 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से। इस गीत को गाया है रवि ने, संगीत है रवि का और गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

वापस इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

श्रोताओं, ये गीत गाया था किशोर कुमार ने, जिसे हमने लिया था फिल्म जोशीला से। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुना करदे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी अज टाले पर मिंजे सोगी पंच दा पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी, कने कार्यक्रम सुना करदे सारे ही स्रोतियां जो भी पंच की तरफा दे राम राम। दिखा बड़का चाचू जी, तो सब तो पहले तो यह दसा तुहां कि अपनी कणका की जिहड़ी कटाई है और इहदी गाने दा कम जिहड़ा सै तुहां करी लिया कि हले करना है?
0: बिल्कुल तुहां ठीक बोला करदे ने, क्योंकि दिखा कि हुण साडा जिहड़ा क्षेत्र ने हिमाचल प्रदेश दे ना
1: जी जी
0: अलग अलग और अलग अलग उहदी जिहड़ी जलवायु है।
1: हाँ जी,
0: तो दिखा मैं ठहरिया अपना पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला
1: जी,
0: तो अले भाई थोड़ा देर समय लगना साड़ी कणक की फसल जो पकने का, और जिहड़ी अहां जौ बाए थे से तो अहां कटाई करी भी ली है।
1: अच्छा,
0: और उहदी गहाई भी करी ली है।
1: चलो बड़ा अच्छा, कने अहां भी जिहड़ी से थोड़ी कणक मैं भी बड़ी ली हुई, पर दिखा तो हाँ पिछले कल भी बारिश हुई और आज भी जिहड़ी से बड़ी बारिश जिहड़ी से साढ़े इलाके च हुई है, और मैं तो जिहड़ा से पहले जिहड़ी बड़ी थी ना कणक, मैं और नहीं बड़ी, मतलब जिहड़ा बड़ी ही थी साजो ही जिहड़ा से एक ही जगह इकट्ठा करके तिस पर जिहड़ा से तिरपाल वगैरह उड़ाई था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मैं देखा कि वर्खा जिहड़ी से आने वाली है और इस दे अनुसार हाँ जो जिहड़ा से अपने सावधानी है जिहड़ी से बरतना चाहिए, जियां भी मौसम पर निर्भर है साढ़े काम ना खेतीबाड़ी दे, तो अहाँ जो जिहड़े से तिरपाल होइए रस्से होइए और कई सारे प्रबंध जिहड़े से पहले ही कर लेने चाहिए, और जल्लू भी बारिश का मौसम माहौल जिहड़ा से बना दा था तैलू जिहड़ा से इस चीज़ें जो अहाँ ध्यान च रखते हुए अपने खेतीबाड़ी दे काम कार जिहड़े से करने है ना
0: बिल्कुल कहने दिखा कि साड़ी साले भर की जी मेहनत होंगी है
1: जी।
0: तो अगर सही तरीके ने साढ़े घर द्वार पहुंची जाए तो ही साड़ी सू जी मेहनत है जो फल के भी मिलना है।
1: बिल्कुल, और इस बीच हाँ जलू हाँ अपने कणक की कटाई करते न बड़का चाचू जी, तो अजकल जी बारिश हो दी तो अगर हाँ अजकल इन दिनों साढ़े जी मिट्टी है इस बीच नमी ज़्यादा बनी है
0: जी जी जी
1: और
0: जी
1: जलू हाँ कणक दराटिए ने अपने कणक जो कटते तो इसते क्या होंगे कि कणक के कन्ने कन्ने जड़े से जड़ा कन्ने जड़े मिट्टी भी आई जाती है
0: जी जी जी जी
1: इसते जड़ा से समझो कई तरह की मुश्किलात होंगे, जी कि साढ़े बूहे बिच भी मिट्टी आई जाती, साढ़े जड़े दाने ने तो इस बिच भी मिट्टी आई जाती है ना, तो इन चीज़ों से अहाँ बचना और अहाँ जड़े से अच्छे डाटियाँ जी अज दंदराल जड़ी चली अजकल ना आरी वाली डाटियाँ
0: बिल्कुल
1: सह
0: बिल्कुल
1: बड़ी अच्छी कामयाब ने इन इस मौसम च, और अहाँ जड़े से इसते क्या होंगे कि तीन डाटियाँ ने अगर अहाँ अपने खेतर जो अपने जड़ी फसल है तिस जो कट गए तो इस बिच जड़े से मिट्टी आने की बड़े घट जड़े से संभावना रहती है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और इस दे कन्ने कन्ने अहाँ जो जड़े से इन दे जड़े पुले ना सह भी छोटे छोटे बनाने है ना जी,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: अगर अहाँ पुले छोटे छोटे बनाए होंगे ना तो इससे क्या होंगे कि अगर बारिश हो ही भी जाती है तो अहाँ तीन छोटे छोटे पुले जो अलग अलग रखी के सुखाई भी जड़े से आसानी कर सकते, अगर अहाँ बड़े बड़े पुले बनाए होंगे तो इससे क्या होना कि बारे बारे से सुखी जाना
0: जी जी
1: पर
0: जी जी
1: अंदर जड़ी इस बिच नमी जड़ी इसे बनी रहनी था इसते जल अहाँ थ्रेसिंग करनी है तो इस बिच भी जड़े से सजो परेशानी होती, और अगर अहाँ कणक साड़ी जी इसे गिली है तो इस क्या होंगे बड़का चाचू जी कि चलो अहाँ मशीना थ्रेसिंग कर देता इस बिच भी जड़े से मशीना च भी ज़्यादा लोड पौंदा और ज़्यादा तेल जड़ा से लगता, यानी कि कुल मिलाई के साड़ी थ्रेसिंग की लागत भी जड़ी से बधी जाती है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और इसका एक नुकसान होर हों जल अहाँ गिली कणक की थ्रेसिंग कर देता उसके कन्ने साड़ी जी टूटी होंगी है इस बिच भी जेड़े से टूटी भारी हो जाती और से पंखे कन्ने ऊपर नहीं उठती और बूहे च नहीं मिलती से टूटी जड़ी इसे दाने भी चीरी जाती,
0: जी
1: तो
0: जी जी जी
1: कई बार अहाँ दिखते हैं ना कि अपनी कणक च जेड़े से दाने बिच टूटी जड़ी से ज़्यादा आई जाती है पू दे जेड़े अवशेष होंगे से ज़्यादा आई जाते से इसी कारण होंगे कि साड़ी जी फसल है से सुकी नहीं होंगी और साड़े दाने बिच टूटी जड़ी इसे आती है ना।
0: बिल्कुल कने तुहाड़ी गल्ल मैं समझा करता और किसान भी समझा करते होने, क्योंकि साड़ी अगर अह जी कणक की फसल अगर पूरी तरह सुखी होंगी तो ही तिसा का जो मतलब गहाई करने का भी तो ही एक अलग जो बोलते हैं कि एक मजा है इस काम करने
1: जी
0: का,
1: जी जी
0: तो उसी हिसाब ने सू पूरी अपनी जी फसल के भी काली नहीं करना चाहिए कि ठीक है थोड़ी बहुत चली पौनी है तो तीन क्या होंगे कि साड़ी जी मशीन के इसे भी खराब होने की संभावना रहती
1: संभावना रहती। हाँ जी, और इसके कन्ने कन्ने अहाँ जो जड़े से एक दो तीन दिन जड़ी से धुप्पा लगाई के ही अपनी कणक की जड़ी से थ्रेसिंग कराना चाहिए, दिसते कि साड़ा बू भी जड़ा से साफ सुथरा रहता सुक्का रहता और साड़े जड़े दाने ने से भी साफ सुथरे जड़े से निकलते हैं है ना, और
0: बिल्कुल
1: अगे जड़े से भंडारित करने जो भी तीन जो अहाँ जो आसानी रहती है एक दो धुप्पा लगाई के जड़े से अहाँ अपने जड़े दाने ने तीन पेड़ुओं पाई सकते और जड़ा बू है तिस जो भी सीधे अहाँ अपने डला डलारे ने जड़े से कट्ठे करके अपने घराला च सुरक्षित रखी सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान साथी गल्लां बातां सदियां अग्गे भी जा रहे ने, पुरना हां शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत, तां सुणदे ने लोक गीत
1: जी।

0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
0: Drive home the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.87 lakhs.
3: Yes, 9.87 lakhs. Offer valid till 30th April only.
0: Own this style icon at an EMI of just Rs. 8,999 per month. Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, visit your nearest Nexa showroom today. PNC apply.
2: Nexa.
3: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
0: Why not make a bold move this month?
3: Upgrade to the bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother and makes every journey special.
0: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology and safety.
3: EMI starting at just Rs. 3,999 per month.
0: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
3: Stock limited. Hurry, get 360 degree camera, head-up display, Smart Play Pro Plus, 6 airbags, jaise kai features.
0: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
4: किसान साथियों, लोकगीत और संदेश के बाद हुण फिर यहाँ चलना जानकारी की तरफ। तो डॉक्टर जी सी नेगी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दे मिली सूचना दे अनुसार जन साधारण जो सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मई 2026 भ्यागा 11 बजे पशुधन फार्म परिसर च डॉक्टर जी सी नेगी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दी पशुधन फार्म परिसर च गाभिन बछड़ियां जो खुली बोली दे माध्यम देके भी बेचा जाना है। कने सारे जेडे इच्छुक किसान या फिर पशु पालक कने अनुरोध है कि से इस प्रक्रिया च भाग कन भी ले सकदे ने, और जड़े भी बछड़े दी बोली लगाई जानी है अगर उन्हें ठीक रहा तो से बछड़े जो कहने भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, फिर दे चलना एक प्यारे दे लोक गीत की तरफ, तो सुनते हैं लोक गीत।

0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh, valid till 30th April only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
0: Drive home the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.87 lakhs.
1: Yes, 9.87 lakhs. Offer valid till 30th April only.
0: Own this style icon at an EMI of just Rs. 8,999 per month. Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, visit your nearest Nexa showroom today. PNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथियों, लोकगीत और संदेश के बाद फिर असं तुहां कने गलबात करने ता दिखा कि अजकल असां दे जिहड़े भेड़ पालक न
4: जी जी
3: इन्हां दिनां च जिहड़े अद्धे कहन भी अपने पहाड़ा च जा रहे न और अद्धे जिहड़े अले तिकर चल रहे हन
4: जी
3: और दिखा कि एक ऐसा पालन है भेड़ बकरी पालन की बोलते ना कि मेहनत तो देखा ना पंच हर कम च लगती है ना।
4: हाँ बिल्कुल,
3: क्योंकि बिना मेहनत तो कोई भी काम के अभी सफल नहीं हो पाता है। तो ये भेड़ बकरी पालन भी एक ऐसा व्यवसाय है कि असा दे बुजुर्गों के मतलब ये जड़ा कारोबार के भी चलिया है और हाँ, लेकिन आज दी पीढ़ी के भी इस काम जो मतलब
4: नहीं
3: घटा कर दी है, लेकिन असा दे बुजुर्ग ये काम के भी चलाया तो सानू ये काम के भी चलाना चाहिए।
4: बिल्कुल, साढ़े जेडे पारंपरिक जेडे धंधे ने ना जो हाँ जेडे लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और इस बीच हाँ दे जल भेड़ पालक जेडे मैदानी इलाके च गर्मी बधी जांदी ते सै धीरे धीरे जेडे से उपरी क्षेत्र चलते हैं, है ना।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और कई भेड़ पालक बड़े स्तर पर भी कामकार जेडे इनसे करते हैं और तिना जेडी से भेडा जेडी से अलग रखे झुंड रखे होंगे भेडा और बकरियों के अलग होंगे और इस बीच क्या होंगे कि जेडी भेडा होंगे तिना जेडी से गर्मी ज्यादा लगती है ना।
3: बिल्कुल,
4: जेडी भेडा ने सै तिना जो पहले ही जेडे से पहाड़ा च ले आते और साढ़े जेडी बकरियां होंगे तिना जो जेडे से मैदानी इलाकों से रखते हैं क्योंकि बकरियां जो घट जी से गर्मी लगती है और भेडा जो ज़्यादा गर्मी लगती है तो इन्हें जो ठंडे क्षेत्र जेडे से पहले ले जाते तो इस तरह के उन्होंने जो कई तरह के प्रबंध जेडे से करने पड़ते हैं। पर इस बीच एक गल हो रही कि अहाँ दे जी कि अजकल बेमौसमी बारिश जी से हो करती है ना।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: इस बीच साड़ी खेतीबाड़ी के कामकार प्रभावित नहीं होते, इस बीच उन्होंने काम भी जेडे से प्रभावित हुआ दे जल उसे उपरी क्षेत्र जा दे तो उपरी क्षेत्र जी इसे पहाड़ा च बर्फ भी पो करती
3: काम काज के अपनी खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी के पशु भी रखे छोटे स्तर पर भेड़ा बकरियां भी रखी बोलने का मतलब एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया है तो सानू ये काम कहन भी जोरा शोरा पर करना चाहिए न ताकि साड़ा जड़ा रोजगार के भी एक बड़ा बांका और ठीक ढंग के भी चले
4: जी। तो बड़का चाचू जी इस इन्हें गलबात करने कार्यक्रम के अंत एक और प्यारा दे लोग गीत जेड़े से सुन देन है ना।
3: बिल्कुल।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कने कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां इतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोगिया सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह, हुण अपने ट्रायल दे सस्से बड़का दाचू
1: कने पंच जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद, जय हिंद।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने

जय की पार्टी टीवी के ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा NDA की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज टियाले पर ने मिंज सोगी पंच दा पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे ही स्रोतियां जो भी पंच दी तरफा दे राम राम।
0: बिल्कुल ता किसान साथियों के बारी फिर यहां दोनों टियाले पर आई पुज्जे न
1: जी
0: और जड़ा जानकारी दा सिलसिला के अभी से जारी हो जाना है और जानकारी कने कने प्यारे प्यारे कने मीठे मीठे लोग गीत भी यहां तक पहुंचाने न।
1: बिल्कुल बड़का चाचू कने तुहां जड़ी से जानकारी मिंज लगा दा हाथे च जड़ी से लेके आए न और तुहां दसा जरा क्या जानकारी है अपने स्रोतियां तक भाई यहां जानकारी जड़ी से पहुंचांदे न।
0: बिल्कुल ता किसान साथियों आज जड़ी जानकारी यहां तुहां कने साझा करने से है फसल विविधीकरण दे बारे च
1: जी।
0: ता दिखा पंच जी की भी भारत के भी एक कृषि प्रधान देश है कने इथु दी जड़ी ज्यादातर जड़ी जनसंख्या के भी अपनी आजीविका ताई खेती बाड़ी पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल
0: कने बदलौंदे समय जलवायु परिवर्तन कने बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधना पर बढ़ते दबाव दे कारण पारंपरिक खेती दे तरीके च बदलाव के भी हुई ही है।
1: हाँ बिल्कुल तुम ठीक ला दे और इस बीच जेड़े से फसल विविधीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा दे रूप च जेड़े से उभरे और इस बीच हाँ फसल विविधीकरण दा जेड़ा अर्थ है से एक ही प्रकार दी फसल विच जेड़ा से निर्भर नहीं रहना और हाँ जेड़ा से अलग अलग तरह दी फसला जेड़ी से लगानी है ना और अलग अलग किस्म जेड़ी से हाँ अपने खेतरां च लगांगे तो तिस ते जेड़ा से साड़ा खेती दा जेड़ा बढ़वार है उसका उत्पादन है तिस च भी वृद्धि होनी और साड़ा जेड़ी मिट्टी दी उपजाऊ क्षमता से भी जेड़ी से बनी रहनी।
0: बिल्कुल कहने इस जेड़ा पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा ताहे भी एक जेड़ा ए फसल विविधीकरण के भी बड़ा महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: कहने फसल विविधीकरण का जेड़ा मुख्य उद्देश्य है कृषि प्रणाली जो ज्यादा जेड़ा स्थायी लाभकारी और लचीला बनाना है। किसान मत सारी फसलों की खेती बाड़ी करता है ता जोखिम के भी घट जाता है और आय दे स्रोत भी बढ़ जाते हैं। जिया कि कुसी साल गेहूं की फसल खराब हो जाती है
1: जी
0: तो दूजी जड़ी फसल जिया कि दलहन होगी या तिलहन किसान जो जड़ी आर्थिक सुरक्षा के भी प्रदान करी सकती है।
1: बिल्कुल और इस दे करने करने फसल विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी होंगे कि अहां दे किसान की जड़ी आय है स्थिर और तिस जो बढ़ाने वास्ते जड़े से मदद होंगी है जिया कि अहां नकदी फसल बागवानी फल होइए साड़ी सब्जियां औषधीय पौधे न इन्ह दी खेती बाड़ी जेड़े से जालू साड़ा किसान भाई जेड़ा से रली मिली के करता है ता तिस्ते जेड़ा से उन्हें जो ज्यादा लाभ मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कने फसल विविधीकरण दे जेड़े प्रकार जिया कि फसल चक्र हो गया ता इस जिया किसान एक ही भूमि पर अलग अलग मौसम च मती सारी फसल कने भी उगांदे हन
1: जी।
0: फिर जिया मिश्रित खेती हो गई खेती बाड़ी कने कने होर जिया गतिविधियां जिया कि पशु पालन बागवानी मत्स्य पालन इन्हां जो भी अहां मतलब फसल विविधीकरण च शामिल कने भी करी सकदे हन
1: जी।
0: जिया कि अहां पशुआ पालदे न मधुमक्खी पालदे न मुर्गी पालन दा कार्य करदे न हन
1: हां जी
0: और इस दे लाभ दी गल कीती जाए किसान साथियों ता इस च क्या होना कि एक ता साडी जिहड़ी आय होनी उस च वृद्धि होनी है फिर मिट्टी दी जिहड़ी उर्वरता च सुधार होना है कने जल संरक्षण होना है कने पर्यावरण संरक्षण भी होना है।
1: बिल्कुल
0: और इस दे जिहड़े रोजगार दे अवसर भी मिलने हन कने अंत च अहां ए बोली सकदे हन कि फसल विविधीकरण अज दी कृषि ताई बड़ा वरी जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: ए ना सिर्फ किसानां दी आय जो स्थिर और बढ़ाने च सहायक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा ताई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा है
1: जी।
0: अगर सही नीति तकनीक और जागरूकता दे कने इस जो अपनाए जाए ता ए भारतीय कृषि जो एक नई दिशा दे सकदा है।
1: बिल्कुल बड़का चाची तो हाँ बड़ी अच्छी जड़ी इसे जानकारी हाँ दे स्रोतियां तक पहुंचाई और हाँ जरूर चंगे कि साड़े किसान भाई बागवान भाई भी जेड़े से फसल वृद्धि करन जो अपनान और अपने रोजगार दे विच वृद्धि करन और कने कने उन्हां दी आय दी भी जेड़ी इसे वृद्धि इस विच होनी है।
0: बिल्कुल ता किसान साथियों गल्लां बातां अग्गे भी जर रहे ने पूर्ण हां शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत ता सुनदे ने लोक गीत
1: जी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल, असम व पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, प्रदेश भाजपा ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम किया घोषित, 92.02% रहा परिणाम। सिरमौर जिले के संगड़ा उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, एक घायल। और केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में वितरकों के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं, व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 70% तक बहाल। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के

0: विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में टीवीके जबकि केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और मतदाताओं का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता की शक्ति की जीत हुई है और भाजपा की सुशासन की राजनीति विजयी हुई है। इधर प्रदेश भाजपा ने तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर शिमला में जश्न मनाया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत सुशासन, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता का विश्वास और भाजपा की विचारधारा की विजय है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन में आयोजित जश्न कार्यक्रम में भाग लेते हुए इसे देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताए गए विश्वास की मुहर बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा की शानदार विजय पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ते जनविश्वास, राष्ट्रवादी सोच और भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा।
1: शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहां पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल, आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहां प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे।
0: इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम 92.02% रहा। इस वर्ष कुल 81,417 परीक्षार्थियों में से 74,637 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि 3,071 की कंपार्टमेंट आई है। कला संकाय में कांगड़ा जिला के भवारना स्थित पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंशित कुमार ने 99.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। विज्ञान संकाय में शाहपुर छतड़ी की साइला कश्यप 99% अंक लेकर पहले स्थान पर रही, जबकि वाणिज्य संकाय में ऊना जिला के गगरेट की यशस्विनी चौहान, कृषिका और कांगड़ा पहाड़ा स्कूल के आयान संयुक्त रूप से 98.2% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि पुनर्निरीक्षण व पुनर्मूल्यांकन के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके लिए 1,800 रुपये शुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा घोषित 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनके निरंतर परिश्रम और पढ़ाई के प्रति समर्पण का परिणाम है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है, जो राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों व प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिले के संगढ़ा उपमंडल में पीयू ललाणी भलोना सड़क पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान भलोना स्कूल की मुख्य शिक्षिका अमरा देवी और उनकी 14 वर्षीय बेटी आराध्य, ऊंचा टिक्कर की 14 वर्षीय प्रियंका और कजवा के 62 वर्षीय सज्जन सिंह के रूप में हुई है। चालक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की फौरी राहत जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक कल जयपुर में आयोजित होगी। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान राज्य विधान मंडलों की समितियों की कार्यप्रणाली के सशक्तिकरण के लिए गहन विचार विमर्श व मंथन किया जाएगा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य विधान मंडलों में इसकी कार्यप्रणाली को सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी की कमी नहीं हुई है और व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रैल महीने में 2,15,000 टन से अधिक व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हुई है। उन्होंने बताया कि इस महीने के दौरान 5 किलोग्राम के 23 लाख से अधिक सिलेंडर बेचे गए हैं।
2: कमर्शियल एलपीजी में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
0: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष आत्माराम ने मुख्यमंत्री को पेंशनरों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया है कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम व पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। प्रदेश भाजपा ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम किया घोषित। 92.02% रहा परिणाम। सिरमौर जिले के संगढ़ा उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 घायल। और केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में वितरकों के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं, व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 70% तक बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये पंजाबी गीत जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम लीजिए, सुनिए ये पंजाबी लोकगीत जिसे गाया है आशा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर ने।

श्रोताओं, ये गीत गाया था रिजवान अनवर ने। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह की गाई हुई ये गज़ल।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान कार्यक्रम में, लीजिए सुनिए ये देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है फिल्म उसने कहा था से। इस देशभक्ति गीत को गाया है मन्ना डे ने।

प्रेम पुजारी फिल्म में लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे का गाया हुआ ये देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को लिखा है नीरज ने और धुन बनाई है स्टीव बर्मन ने।

नानक नाम जहाज है। इस फिल्म में लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और धुन बनाई है एस महेंद्र ने।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।

सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज

0: की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए नवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवली,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।

0: 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: slot.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन, उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, सलील चौधरी हिंदी के साथ साथ बंगाली, मलयालम और अन्य भाषाओं में भी संगीत देते थे। उनके जो संगीत था वो था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से भी वे जुड़े हुए थे, जिससे उनके संगीत में सामाजिक सरोकार झलकता था। उनकी फिल्मों की बात करें जिनमें उन्होंने संगीत दिया था, 2 बीघा ज़मीन, आनंद, मधुमति, छाया, रजनीगंधा आदि कई उनकी मशहूर फिल्में हैं।

श्रोताओं, सलील चौधरी के फिल्मों के गानों की बात करें तो उनमें ज़िंदगी कैसी है पहेली आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आ जा रे परदेसी इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा, और ऐ मेरे प्यारे वतन आदि कई मशहूर फिल्मों में, गीतों में सलील चौधरी ने संगीत दिया था।

श्रोताओं, सलील चौधरी का निधन 5 सितंबर 1995 को हुआ था। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सलील चौधरी का संगीत आज भी अपनी गहराई और मधुरता के लिए याद किया जाता है।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम। और कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए ओम प्रकाश और साथियों को।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में आज बांसुरी वादन हरि प्रसाद चौरसिया का, राग है बागेश्वरी रूपकतल।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म 14वीं का चांद से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। संगीत है ओपी नैयर का और गीत को लिखा है कैफ़ी याज़मी ने।

बात एक रात की फिल्म में लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। संगीत है एस टी बर्मन का और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

राजकुमार इस फिल्म में लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। संगीत है शंकर जयकिशन का और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। संगीत है रोशन का और गीत को लिखा है गोपाल दास नीरज ने।

उठे झुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया चलो चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा बहक।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, सुनिए फिल्म दोस्ती से ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर एमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signaling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats, while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party, AJUP, secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front, AIUDF, clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Himanta Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Nyog. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 105 seats and is leading on 2 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 229 results have been declared, while trends are available from other 5 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Karagam, DMK, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 28 seats and is leading on 2 seats, while its rival All India Anna Dravida Munetra Karagam, AIAD, DMK has